मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि तदनुसार 28 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और FM एंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के बाद FM एंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। आज का चिंतन, जो व्यक्ति ज्ञान रहित होकर भी उदंड है, दरिद्र रहकर भी बड़ी बड़ी अभिलाषाएं रखता है और बिना काम किए ही ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहता है, वह हमेशा दुख ही उठाता है। ये था आज का चिंतन और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर अजन्मा है, शरीर नस नाड़ी के बंधन से मुक्त है, प्रकृति सत्य है और जीव सत्यचित है। ईश्वर सत्यचित और आनंद स्वरूप है, प्रकृति बदलती रहती है, जीव जन्म मरण के चक्कर में कर्मों का फल भोगता है और ईश्वर सदैव एक रस है, अजर अमर और सर्वव्यापक है। इसकी शक्ति भी अदृश्य है और अलौकिक है, कण कण में वो विद्यमान है। आइए सदा सर्वदा उस परम पिता को हम भजते रहें, याद करते रहें।

अग्नि का कार्य शुद्ध करना है, उसी प्रकार निष्काम कार्य करने वाला कभी भी फल में उत्सुकता नहीं रखता। निष्काम सेवा करने वाला सहनशील बन जाता है। उसके जीवन की हर क्रिया, सोना जागना उठना बैठना यज्ञ रूप हो जाते हैं, जिसमें दुष्ट भावनाएं जलकर राख हो जाते हैं। हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारी भक्ति, हमारी सेवा, हमारा कर्म, हमारा ज्ञान सकाम है या फिर निष्काम। श्री कृष्ण कर्म योगी कहलाए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य सर्व हितकारी, सर्व कल्याणकारी और निष्काम भाव कार्य थे। वे महान कर्मयोगी कहलाए। आइए हम भी कुछ इसी रास्ते पर चलकर देखें।

भगवान कृष्ण का प्रेम और प्रकाश आपके जीवन के हर मार्ग को प्रकाशित करे। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके विचार आज भी अनमोल हैं, जैसे कि कर्म पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता ना करें। आप पर आपके जीवन में सदैव आशीर्वाद श्री कृष्ण का बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे और आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो, इसी कामना के साथ संपन्न करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आप सुन रहे थे भक्ति गीतों की दैनिक प्रस्तुति वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुने श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों, तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम

यानी आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है? मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं। आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूं। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

0: भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के स्वर में आपने सुना श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय प्रसारण। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से लीजिए अब सुनिए कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बातों में जिक्र करेंगे अदरक की काश्त। किसान भाइयों, हमें साह डाली खेती करा हाँ, जिसमें परंपरागत खेती भी है, नकदी भी है, तिलनी है, दलहनी है, सब्जी फसलें हैं और औषधीय फसलें हैं, कृषि वानिकी भी है। मतलब यानी किसान भाई अपने से काम से खेती के साथ साथ दूसरा जो व्यवसाय वो भी, और वो खेती भी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए भाई ने वो करें। तो बात हमें मसाले वाली सब्जी फसलों की करें तो उसमें जिस तरह अदरक है, हल्दी है, सौंफ है, जैसे जीरा है, यानी सारे डाल की ये आम हैं। तो उसमें बात हमें इन फसलें करा तो इसमें वैसे तो हमने लगता तो है नहीं कि भाई इतना हो, लेकिन इनमें अगर समय रहते हम कर ले हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। एक सूझबूझ के साथ और बड़ी के साथ यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ करा है तो हमने बहुत ज्यादा इसमें फायदा हो जाए, और खास कर क्योंकि ये तो थोड़े समय के लिए है और बढ़िया पैदावार हमने ये दे जाए, तो इसलिए हमने इस और भी ध्यान देना चाहिए जो परंपरागत।

0: खेती कर रहा है उसकी बजाय मसाले वाली सब्जी फसलें हैं उनके लिए, और जो औषधीय हैं उनके ऊपर या बागवानी के ऊपर, यानी जो भी आपका समझ माओ बढ़िया लगा आप वो कर सको हो उसमें। तो अदरक की बात करा तो इसमें वैसे तो कई किस्में हैं, लेकिन जो स्थानीय किस्में हैं ना वो बहुत बढ़िया हैं, उन्हें लगाओ तो बढ़िया रहा क्योंकि अपने वातावरण के अनुकूल जलवायु के अनुकूल वो है, तो उसमें ही ज्यादा हमें फायदा हो जाएगा। बिजाई का टाइम इसमें जो भाइयों वो है अप्रैल से जून तक, यानी यो जो सही समय चल रहा है इसका अदरक की बिजाई करा तो ये सबसे बढ़िया समय है। बीज की मात्रा की बात है भाइयों, जहां तक इसमें 4 से 6 क्विंटल जो कंद है वो लगेंगे 1 एकड़ के हिसाब से। हाँ, ध्यान ये रखे बीज भरोसे जगह ते लावे और उसमें कोई किसी प्रकार की फफूंद ना लाग रही हो, यानी साफ सुथरा स्वस्थ बीज हो वो ही लगाओ तो बढ़िया रहे, और बीज की मात्रा रहेगी 4 से 6 क्विंटल की लगभग 1 एकड़ में। बिजाई का तरीका तो भाई जिस तरह आप जानो हो कि भाई लाइना में हमने बिजाई करनी है, और लाइन ते लाइन का फासला हमने इसमें 45 सेंटीमीटर या यूं कह सकते हैं कि भाई 1.5 फुट रखना है, कंध से कंध का फासला हमने 30 सेंटीमीटर या 1 फिट का रखना है। खादा ही बात है भाइयों, इसमें तो लगभग 10 टन गोबर की गली छड़ी खाद जिस तरह ये तो बताया जाए भाइयों, चाहे कोई औषधीय फसल हो, चाहे मसाले वाली फसल हो, चाहे कोई सब्जी फसल हो, उसमें हमने देसी खादों का तो प्रयोग करना चाहिए। और देसी खाद भी इस तरह करने हैं भाइयों हमने कि वह अच्छी गली छड़ी खाद हो, गोबर की कच्ची गोबर की खाद ना हो उसमें, क्योंकि उससे तो डिमक ही होगी और हमारी जो फसल की हम बिजाई कराएंगे वह खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उसमें। तो इसमें 10 टन तो गोबर की गली छड़ी खाद लेनी है, 80 किलो इसमें हमने यूरिया लेना है, और 120 किलोग्राम हमने इसमें सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, और 20 किलोग्राम इसमें फास्फोरस लेना है, 20 किलोग्राम इसमें हमने पोटाश लेना है। गोबर की खाद बिजाई रोपाई 3 सप्ताह पहले हमने जुताई के टाइम पर खेत में बखेर करने और अच्छी तरह मिला देनी है। नाइट्रोजन की 1/3 तो और फास्फोरस और पोटाश की सारी मात्रा बिजाई के समय दे देनी है, यानी जो हमने यूरिया है यूरिया का 1/3 ऐसा तो हमने बिजाई के समय, और सारी फास्फोरस पोटाश तो हमने बिजाई के समय दे देनी है। जो नाइट्रोजन हमारी बच जाएगी वह 2 भागा में हमने देनी है, एक जब अरेक मीटर डालने लगा उस टाइम पे करनी है। पैदावार है इसकी भाइयों जहां तक हमने 60 से 80 क्विंटल के लगभग 1 एकड़ में हमने ये कंद मिल जाए। और ध्यान इसमें ये रखें जो बिजाई का समय है, बिजाई का समय ये है हमने अप्रैल से और जून तक इसमें हमने बिजाई कर देनी है, उससे पहले या बाद में तो जो समय की कराएंगे हम बिजाई तो उसमें हमने इतना फायदा नहीं होगा कि वह जो किसान भाई ने चाहिए। और किस्में जिस तरह बताया स्थानीय किस्में रहेंगी, और जो इसके कंद हैं यानी बीज है वो कंद हमने लेने हैं 4 से 6 क्विंटल 1 एकड़ में लिए, और जिस तरह बताया बिजाई करनी हमने लाइना में, लाइन टू लाइन का फासला हमने इसमें रखना 1.5 फुट और कंध से कंध का फासला रखना हमने इसमें 1 फिट का। खाद की बताई थी जिस तरह 85 किलो तो इसमें हमने लेना है यूरिया, और 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, 20 किलोग्राम इसमें पोटाश लेना है, और ये बिजाई के समय हमने दे देना है। नाइट्रोजन की 2/3 अच्छा रख लें, और वो हमने उसमें खड़ी फसल में जब हमें मिट्टी से डालेंगे उस टाइम पे हमने देनी है। तो इन मोटी मोटी बातें भाई हम ध्यान रखेंगे, अदरक से अच्छी पैदावार ले लेंगे।
1: आपने सुनी कृषि की बातें, समसामयिक चर्चा का विषय था अदरक की काश्त। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत हिंदी व अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 51वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन संबद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां सप्त महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षीबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य 3वें राज्यम् अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षीबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ़ अनुशासनस्य राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबंध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय संदेशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः भ्रमात्मकः तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबंध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमंत्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासं आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्यसर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षिप्रमुखाणां कृते सञ्चेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around

आज रात 9:30 पर कार्यक्रम कंट्री वाइड और रात 9:45 पर कार्यक्रम इनसाइट्स, दोनों ही कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर साप्ताहिक समीक्षा सुनिएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दूसरी सभा में दिन में 12:30 पर। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 7:15 पर साहित्य चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा गजल पर चर्चा। चर्चा करेंगे श्री दिनेश कुमार दधीची। दैनिक प्रस्तुति सुबह सवेरे का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 7:30 पर।

खेत खलिहान कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 पर, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश कुमार के साथ भेंटवार्ता का विषय होगा कपास फसल की कीड़ों से रक्षा। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7:00 आप सुनेंगे बातचीत, विषय रहेगा मलेरिया रोग कारण व उपचार। और ये हैं संगीत के कुछ आकर्षण। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:25 पर। लोक संगीत कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 8:30 पर। आपकी फोन कॉल पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक का प्रसारण होगा प्रातः 9:00। फिल्म संगीत आप दिन में 1:10 पर और शाम 7:30 पर भी सुन सकते हैं।

आपकी खतों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनचाहे गीत आप सुनेंगे आज रात 10 बजे। एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर आपको सुनवाएंगे गुंजन सक्सेना फिल्म से कुछ गीत।

0: आप सुन रहे थे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब सुने गजल पर ये साहित्य चर्चा, और चर्चा कर रहे हैं श्री दिनेश कुमार दधीची।
1: गजल मूलतः अरबी फारसी साहित्य की देन मानी जाती है, जो उर्दू के माध्यम से भारतीय साहित्य में लोकप्रिय हुई। गजल अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ औरतों से बातें करना या प्रेम की बातें करना होता है। काव्य रचना की दृष्टि से यह एक ऐसी लोकप्रिय विधा है जिसमें प्रेम, विरह, दर्द

और जीवन दर्शन को संगीतमय और लयबद्ध तरीके से व्यक्त किया जाता है। भारतेंदु युग और छायावादी युग में गजल अपने शैशव काल में थी और मुख्य रूप से उर्दू शायरी का हिस्सा थी, जिसे हिंदी कवियों ने प्रयोग के तौर पर आजमाना शुरू किया था, अपनाना शुरू किया था। भारतेंदु युग में गजलें मुख्य रूप से ब्रज भाषा में या उर्दू मिश्रित हिंदी में लिखी जाती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन इस युग के प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की गजलें प्रेम, विरह और जीवन की नश्वरता जैसे विषयों पर आधारित हैं। इस युग की गजलों या गजल नुमा कविताओं में अब सामाजिक सुधार, श्रृंगार और देशभक्ति के भाव प्रमुख होते थे। 20वीं सदी में मैथिली शरण गुप्त जैसे प्रमुख कवियों ने हिंदी गजल के बीज बोए। इस दौर में गजल प्रेम, देशभक्ति और भक्ति के भावों के साथ प्रकट हुई। इस काल के कवियों ने गजल के शिल्प के अनुसार काफिया और रदीफ को तो अपनाया, लेकिन इसमें विषय वस्तु के स्तर पर छायावादी भाव बोध जैसे विरह, सौंदर्य और रहस्य आदि को भर दिया। इस प्रकार भारतेंदु युग और छायावादी युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों ने हिंदी गजल के बीज बोए। इस दौर में गजल प्रेम, देशभक्ति और भक्ति के भावों के साथ प्रकट हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की गजलें प्रेम, विरह और जीवन की नश्वरता जैसे विषयों पर आधारित हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध गजलों के उदाहरण हैं, गले मुझको लगा लो ऐ मेरे दिलदार होली में, इसी तरह एक और देखिए, आ गई सर पर कजा लो सारा सामा रह गया, और उठा के नाज से दामन भला किधर को चले। रोचक बात यह है कि उनकी कुछ उर्दू गजलें भी हैं जो रेख्ता पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त की नर हो न निराश करो मन को का उदाहरण दिया जा सकता है। संक्षेप में, इस दौर में गजल प्रेम, देशभक्ति और भक्ति के भावों के साथ प्रकट हुई। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से गजल ने हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया था। आज हिंदी गजल न केवल साहित्यिक मंचों पर बल्कि जन संचार माध्यमों, गीत संगीत और सामाजिक सरोकारों की सृजनात्मक अभिव्यक्तियों में भी अपनी सशक्त पहचान स्थापित कर चुकी है। प्रारंभिक दौर में प्रायः यह मान लिया जाता था गजल उर्दू भाषा की विधा है। व्यावहारिक दृष्टि से कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी गजल में उर्दू और हिंदी दोनों के शब्द बड़े सहज और स्वाभाविक ढंग से आते हैं। इस संदर्भ में हरे राम समीप ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है, वास्तव में जिस भाषा को आज हम उर्दू कह रहे हैं वह हिंदी से एकदम अलग कभी नहीं रही है, भाषा के नजरिए से भी और साहित्य के नजरिए से भी। उर्दू के प्रारंभिक शायरों ने अपनी भाषा को हिंदवी कहकर ही पुकारा था। बाद में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के चलते पहले तो जन सामान्य की भाषा के रूप में ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने लिया, और फिर उस खड़ी बोली में अरबी, फारसी शब्दावली के बढ़ते जाने से उर्दू का विकास हुआ। इस तरह आज दोनों ही भाषाओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक सी है। अब से 50 वर्ष पूर्व आपातकाल के दौर में दुष्यंत कुमार ने गजल को प्रभावशाली विधा के रूप में अपनाया। उनकी एक लोकप्रिय गजल यूं शुरू होती है, कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। इन पंक्तियों में जैसे पूरा सामाजिक यथार्थ समाया है, वैसी ही पहचान आज भी हिंदी गजल की है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हिंदी गजल का वास्तविक रूपांतरण दुष्यंत कुमार के हाथों 70 के दशक के मध्य में उनके गजल संग्रह साये में धूप के प्रकाशन के साथ हुआ। उन्होंने गजल को सामाजिक चेतना और राजनीतिक यथार्थ की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। भाषा की दृष्टि से उनकी गजलें उर्दू से धीरे धीरे हिंदी की ओर प्रस्थान करती प्रतीत होती हैं, लेकिन यह हिंदी बोलचाल की भाषा के निकट है और सामान्यतः तत्सम शब्दावली से दूर रहती है। विषय की दृष्टि से अनेक पंक्तियों में दुष्यंत की गजल सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा का प्रतीक बन जाती है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित द्वैमासिक पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य

0: नित्य के नवंबर दिसंबर 2025 के अंक में 50 वर्ष पूर्व प्रकाशित दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह साय में धूप के विषय में चर्चा की गई है। दूसरे शब्दों में हिंदी गजल के इतिहास में दुष्यंत कुमार का नाम एक ऐसे कवि के रूप में लिया जाता है जिन्होंने इस विधा को जनमानस से जोड़ा। इससे पहले हिंदी गजल प्रायः श्रृंगार रस और व्यक्तिगत अनुभूतियों तक सीमित थी, परंतु दुष्यंत कुमार ने इसमें सामाजिक यथार्थ, राजनीतिक चेतना और जन संवेदना को स्वर दिया। निस्संदेह विधा के स्तर पर उन्होंने उर्दू गजल की परंपरा से प्रेरणा ली और हिंदी में ऐसी गजलें लिखी जो आम आदमी की पीड़ा और संघर्ष को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करती हैं। दुष्यंत की गजलों में भाषा अत्यंत सरल, जनप्रिय और प्रभावशाली है। उन्होंने शुद्ध उर्दू शब्दावली की जगह बोलचाल की हिंदी को अपनाया जिससे गजल अभिजात्य के दायरे से निकलकर जन भाषा की काव्य विधा बन गई। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, केवल भावनात्मक नहीं बल्कि सामाजिक चेतना से ओतप्रोत है। इनसे यह स्पष्ट होता है कि गजल अब केवल प्रेम की नहीं बल्कि परिवर्तन की आवाज बन चुकी थी। इस प्रकार आदि शताब्दी पहले के उस दौर में दुष्यंत कुमार ने हिंदी गजल को एक नई दिशा, पहचान और उद्देश्य दिया। उन्होंने गजल को मंच और जन संघर्ष दोनों से जोड़ा जिससे यह हिंदी साहित्य में एक जीवंत और प्रासंगिक विधा बन गई। उनके बाद की पीढ़ी के लोकप्रिय गजलकारों के शेर प्रायः खूब प्रचलित हुए। इनमें अदम गोंडवी, राहत इंदौरी, ज्ञान प्रकाश विवेक, सूर्य भानुगुप्त, विजय सिंघल, निदा फाजली, वसीम बरेलवी, गोपालदास नीरज, कुंवर बेचैन, राजेश रेड्डी, कुमार विश्वास, कुमार विनोद, दिनेश रघुवंशी, अजय अज्ञात, माधव कौशिक, अशोक रावत और बालस्वरूप राही आदि ने इसी सामाजिक सचेत परंपरा को आगे बढ़ाया। इन गजलकारों के कुछ चुने हुए शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। विजय सिंघल, अपने पैरों के छालों के नीचे है जख्मी फुटपाथ, शानदार सड़कों को उनकी चौड़ी कारें निगल गईं। अदम गोंडवी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। राहत इंदौरी, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे। ज्ञान प्रकाश विवेक, लपेटिए इसे रखिए या काटते रहिए, गरीब आदमी कपड़े का थान होता है। सूर्य भानुगुप्त, रंज इसका नहीं कि हम टूटे, ये तो अच्छा हुआ भरम टूटे। निदा फाजली, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वसीम बरेलवी, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे। और एक और शेर इनका, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। कुंवर बेचैन, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। और इन्हीं का एक और शेर कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। राजेश रेड्डी, उस छोड़ के जाने वाले का यूं छोड़ के जाना बनता था, वो शख्स हमारा था ही नहीं जो शख्स हमारा बनता था। माधव कौशिक, दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। अजय अज्ञात, किसी के बारे में दिन रात सोचना क्या है, जो इश्क करना है कर डालो मसला क्या है। नीरज, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और एक और शेर, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। बालस्वरूप राही, हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। कुमार विनोद, कहां दरकार सूरज को किसी छुट्टी की रहती है, नदी को भी कहां फुर्सत वो संडे को भी बहती है। कुमार विश्वास। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। बहरहाल दुष्यंत कुमार न केवल आधुनिक हिंदी गजल के प्रवर्तक हैं, बल्कि उन्होंने उसे साहित्यिक और जनपक्षीय दोनों स्तरों पर नई ऊंचाइयां प्रदान की। युवा कवियों ने हिंदी गजल में रिश्तों और आत्मसंवाद की संवेदना को जोड़ा। हिंदी गजल के शेरों में विषयों की विविधता भी आकर्षित करती है। इनमें प्रेम, रूप, अध्यात्म, दर्शन, सच्चाइयां, अनुभव, मनोविश्लेषण, नैतिक मूल्य, संदेश, सामाजिक सरोकार, व्यवस्था जैसे विषय शामिल हैं। तो आज की हिंदी गजल समाज की जमीनी हकीकत, असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आम जन की समस्याओं को स्वर देती है। यह अब श्रृंगार से आगे बढ़कर संघर्ष, विरोध और यथार्थ की प्रतिनिधि बन चुकी है। सामाजिक सरोकार और जन चेतना जागृत करने का प्रयास इन गजलों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। विधा के रूप में गजल की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। हिंदी गजल की इस यात्रा पर दृष्टिपात करें तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि गजल के उर्दू से हिंदी में प्रवेश करने के परिणाम कुल मिलाकर बहुत अच्छे रहे हैं। हिंदी गजल अब प्रौढ़ हो गई है। शुरू में दिक्कतें आईं, संशय की स्थितियां भी बनी रहीं, सीखने की प्रक्रिया तो अभी निरंतर चल ही रही है। साथ ही इस बात के प्रमाण भी हमारे सामने हैं कि हिंदी में प्रस्तुत होने के परिणाम स्वरूप गजल नामक इस विधा की लोकप्रियता और पहुंच का विस्तार हो रहा है।
1: विविधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गजल पर साहित्य चर्चा। चर्चा कर रहे थे श्री दिनेश कुमार दधी जी। ये प्रसारण आपने सुना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और आकाशवाणी की ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आप हमारे कार्यक्रम DTH पर भी सुन सकते हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत और समसामयिक चर्चा का मिला जुला कार्यक्रम सुबह सवेरे।

नमस्कार हमारे सभी सुनने वालों को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चहेते कार्यक्रम सुबह सवेरे में। कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी साथी उषा मलिक। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और इस चिलचिलाती गर्मी के मौसम में अपना जो है वो ध्यान भी रख रहे होंगे और स्वस्थ अपने आप को बना रखेंगे। श्रोताओं, आज कुछ विषय फिर से हमारे पास हैं रोज़ाना की तरह और कुछ गीत भी, इस उम्मीद के साथ कि इस गर्म मौसम में ये गीत ये बातें आपको कुछ राहत देंगी। आज हम मना रहे हैं महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसके अलावा मना रहे हैं विश्व भूख दिवस और इसके अलावा हम मना रहे हैं वीर सावरकर जयंती भी। श्रोताओं, 1987 से हर साल 28 मई को मनाए जाने वाला महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस महिलाओं के यौन प्रजनन अधिकारों और स्वास्थ्य सुविधाओं की वकालत करने के लिए समर्पित एक दिन है। यह अभियान मुख्य रूप से विमेंस ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा विश्व भूख दिवस की बात करें तो यह दिन दुनिया भर में भूखमरी की समस्या और उस समस्या कुपोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ताकि सभी को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिल सके। इसके अलावा आज के दिन वीर सावरकर जयंती हम मना रहे हैं। भारतीय इतिहास में 28 मई का दिन स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व के प्रणेता विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के रूप में याद किया जाता है। उनका जन्म आज के दिन 1883 में महाराष्ट्र के भागुर गाँव में हुआ था। तो श्रोताओं, बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे। सबसे पहले तो महिलाओं से संबंधित जो स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हैं उस दिन पर ही हम आपके साथ करेंगे।

श्रोताओं, 28 मई आज और महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस आज हम मना रहे हैं, जो हर साल 28 मई के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों और महिला के समग्र कल्याण के बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाना। महत्व की बात करें तो यह दिन स्वास्थ्य सेवाओं में लैंगिक असमानताओं को दूर करने और सुरक्षित स्वास्थ्य विकल्पों को सुनिश्चित करने पर जोर देता है। नियमित जांच महिलाओं की किसी भी बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है, जिसे हम एनुअल हेल्थ चेकअप भी कर सकते हैं। हर महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन्हें अपने जो है साल में एक बार हेल्थ चेकअप विशेषकर बढ़ती उम्र में ज़रूर करवा लेना चाहिए। पोषण और फिटनेस की बात करें तो संतुलित आहार उनको हमेशा ही लेना चाहिए, चाहे वो माँ बनने वाली हों, चाहे वो किशोरी हों, चाहे वो युवा हों, या फिर अधेड़ उम्र की हों, या फिर उनकी उम्र बढ़ रही हो। अपनी उम्र के हिसाब से, अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से यदि जानकारी नहीं है तो डॉक्टर से सलाह के अनुसार उन्हें हमेशा ही संतुलित आहार लेना चाहिए और खुद को सक्रिय रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का जो है वो पैदल चलना, व्यायाम या कोई ना कोई योग ज़रूर अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। महिला स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न पहल जो है वो सरकारी योजनाएं जो हैं वो या फिर जागरूकता अभियान जो हैं उनके बारे में विस्तार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल, जिसे NHP कहा जाता है, जानकारी प्राप्त महिलाएँ कर सकती हैं। इस दिन स्वास्थ्य संगठन द्वारा NGO और कार्यकर्ता सेमिनार, मेडिकल कैंप और ऑनलाइन अभियानों के माध्यम से महिलाओं और उनके स्वास्थ्य के प्रति, अधिकारों के प्रति उन्हें सशक्त करने के लिए बहुत से जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जाते हैं। और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि सुरक्षित मातृत्व, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता, उनका यौन स्वास्थ्य, उनका मानसिक स्वास्थ्य, और इन मुद्दों पर खुलकर महिलाओं को बात करनी चाहिए। अंदर ही अंदर नहीं घुटना चाहिए, नहीं कोई भी अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतनी चाहिए। उन्हें जागरूक रहना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। परिवार में अपने स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी उनको महसूस होती है तो उस पर बात करनी चाहिए और समाधान के लिए कदम भी उठानी चाहिए, क्योंकि महिला एक परिवार की धुरी है जो परिवार को चलाती है। यदि उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, तो वो कैसे इस परिवार को अच्छे से चला पाएगी, कैसे अपने बड़ों का ध्यान रख पाएगी और कैसे

अपने छोटे बच्चों का ध्यान रख पाएगी। तो बेहतर यही होगा कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करे। किसी तरह के भी कोई मानसिक परेशानी उसे है, शारीरिक दिक्कत उसे है, तो उस पर लापरवाही ना बरते। ज़रूर अपने परिवार से बात करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि परिवार अच्छे से चल सके।

बिल्कुल, हर कदम पर नारी की ज़रूरत होती है। घर हो या बाहर हो, नारी से सदाबहार है हर जगह। चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे घर का कार्य क्षेत्र हो या फिर बाहर का, महिला हर जगह अपने काम से, अपने बुद्धि से, अपनी योग्यता से अपना लोहा मनवाती है और वो सभी का हमेशा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम भी उसका स्वास्थ्य संबंधी जो ध्यान है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, हमेशा उसका ध्यान रखें। और श्रोताओं, आज के दिन एक और दिन विशेष भी हम मना रहे हैं। 28 मई को हर साल विश्व भूख दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में पुरानी भूख यानी क्रोनिक हंगर और कुपोषण से पीड़ित लाखों लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और भूख और गरीबी को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए समाधान खोजना। इसकी शुरुआत द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा 2011 में की गई थी। तब से यह दिन दुनिया भर में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण अभियान बन चुका है, जो व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों को भूख मुक्त विश्व के लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल भोजन दान करने के बारे में नहीं है, बल्कि भूख के मूल कारणों जैसे कि गरीबी, असमानता और खराब कृषि बुनियादी ढांचे को खत्म करने पर भी जोर देता है। उन लाखों लोगों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करता है जो स्थायी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। और इस दिन से संबंधित यानी खाद्य से संबंधित अन्य दिन भी हम मनाते हैं। विश्व स्तर पर भूख और भोजन से जुड़े हुए बहुत से दिन हम मनाते हैं, जैसे अक्सर विश्व भूख दिवस के साथ हम भ्रमित भी होते हैं। जैसे कि 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। जैसे कि आज विश्व भूख दिवस हम मना रहे हैं, वैसे ही विश्व खाद्य दिवस हम मनाते हैं जो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और दुनिया भर के लोग और संगठन इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों और दान के माध्यम से एकजुट होते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी हम मनाते हैं हर साल, वो 7 जून को हम मनाते हैं, जो सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व भूख दिवस आज हम मना रहे हैं और विश्व भूख दिवस हम सभी के लिए एक आह्वान है कि हम सभी जमीनी स्तर पर काम कर रहे संगठनों का समर्थन करें, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करें और अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन के बारे में सोच समझ कर फैसला लें। भूख को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकते हैं हम इस तरह से, और साथ मिलकर हम एक ऐसा विश्व बना सकते हैं जहाँ हर किसी को स्वस्थ और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: अश्रोताओं, एक और विषय पर आज बात करते हैं। वीर सावरकर जयंती हर साल 28 मई को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के रूप में मनाई जाती है। 1883 में महाराष्ट्र में जन्मे सावरकर को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और हिंदुत्व के मूल दर्शन को तैयार करने के लिए जाना जाता है। मित्र मेला और अभिनव भारत सोसाइटी जैसे क्रांतिकारी संगठनों की उन्होंने स्थापना की। द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ हिंदुत्व, हु इज द हिंदू जैसी प्रभावशाली पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से हम जानते हैं, कठोर कारावास का सामना उसमें इन्होंने किया। उनकी द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई। हिंदुत्व दर्शन के बारे में उन्होंने लिखा। जाति व्यवस्था के उन्मूलन की उन्होंने वकालत की। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की हिंदू धर्म में वापसी का उन्होंने समर्थन किया। स्वतंत्रता के लिए चर्चिल की समुद्री तार उन्होंने भेजा और आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे। आज़ादी के माध्यमों के बारे में गांधी जी और सावरकर का नज़रिया बेशक अलग अलग था। वे दुनिया के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया, और इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद दोबारा से लिखा। उनका संपूर्ण जीवन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए बीता। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। भारत के इस महान क्रांतिकारी का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। उन्होंने भारत

स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भी भेजा था। उनका संपूर्ण जीवन स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए ही बीता था और आज उनका जयंती वर्ष हम मना रहे हैं, उनकी जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं। उनका प्रयास, उनकी कार्य सर्वदा ही सराहनीय रहे और उन्हें इसी तरह हम सभी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए याद करते रहेंगे।

0: और इस खूबसूरत से गीत के बाद, संदेश देते हुए इस गीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं मौसम की, जो लाजमी भी है और करनी बिल्कुल चाहिए। श्रोताओं, जो नौ तपा है वो 25 मई से शुरू हो चुका है, जो 9 दिन का होता है। इन दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है, तो इस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखना अपना बेहद ज़रूरी हो जाता है। भीषण गर्मी और लू के कारण डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक, जैसे लू लगना जिसे हम कहते हैं, या त्वचा की समस्याएँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, खतरा उनका बढ़ने का। और इन दिनों हाइड्रेटेड आप रहें, हल्का भोजन करें और सीधी धूप से बचें। पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। सादे पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, छाछ का प्रयोग करें और घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। इसके अलावा भारी तला भुना और मसालेदार खाना खाने से आप इन दिनों में बचें। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, मौसमी फलों को अपने डाइट में शामिल करें। शराब और कैफीन यानी चाय कॉफ़ी का सेवन आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये हमेशा ही शरीर के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते, और जब गर्मी ज़्यादा हो तो ये शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं, यानी पानी की कमी इनसे हो सकती है, तो इनका प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से कोशिश करें कि आप बचें। अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो सूती कपड़े पहनें और सिर को हमेशा ही ढक कर निकलें। और पहले से यदि कोई लोग बीमार हैं, जैसे डायबिटीज़ के रोग हैं या हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, उनको तो हीट स्ट्रेस के कारण अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा थकान, सांस फूलना या पसीना आए तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और अब इन्हीं सब शब्दों, बातों, गीतों के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी उषा मलिक को, आज का ये कार्यक्रम यहीं समेटेगी। हमेशा जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और इसी तरह कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहें। और अब आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के साथ समाचार सुनने के लिए, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। रिले की प्रतीक्षा करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत

0: मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
5: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
6: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद जागृति। ऐसा यार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, ऐसा यार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा ऐसा यार। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू, हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation, and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज़ आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को

0: विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं अजीत सिंह और उनके साथी।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम के मध्याय व्यवधान के लिए हमें खेद है। ये प्रसारण आपने सुना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आज कलाकार थे अजीत सिंह और उनके साथी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक।

0: एक्स काम कर रही हैं, और 01262 STD कोड रोहतक का लगाना ना भूलें और हमसे बात करें, और हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाने की। देखते हैं पहले कॉलर कौन है और कौन सा गीत सुनना चाहेंगे। हेलो।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार जी, स्वागत है बहुत बहुत कार्यक्रम में।
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से, और मुझे गाना सुनना है दिल क्या करे मूवी का, प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे।
0: हाँ जरूर सुनवा देंगे। मौसम कैसा है आपके यहाँ?
1: मौसम तो साफ है, और अभी जो है 25-30 डिग्री तक जो है तापमान है।
0: चलिए ठीक है, आपके यहाँ मौसम ठीक है, आप उसका आनंद लीजिए, और हमारे यहाँ भी जरूर बदलेगा कुछ ही दिनों में, और गर्मी भी जरूरी है, तो आपको सुनवाए आपकी पसंद का गीत।
1: बिल्कुल सुना दीजिएगा। धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।
1: जी।

0: और अगले हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं हमसे और जानते हैं उनकी पसंद। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है हेलो रोहतक कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद दीदी। ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: भगवान सिंह परमार
1: जी,
0: बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: दीदी मैंने दो फिल्में बताई हैं आप में, उसमें से किस कौन सा गीत मिला आपको? जी
0: कूली नंबर वन का भी मिला है हमें।
1: जी कुली नंबर वन का सुना दीजिए, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं।
0: बिल्कुल, समय के हिसाब से आपने गाना चुना है।
1: जी दीदी, और हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के सभी दोस्तों को डेडिकेट रहेगा दीदी।
0: जी बिल्कुल, सुनिए सभी और आनंद लीजिए इस गीत का। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद दीदी।
0: अपने सभी सुनने वालों से हमारी यही इल्तिजा है कि यदि आपका पिछले 2-3 सप्ताह में किसी भी फ़ोन इन कार्यक्रम में फ़ोन कॉल मिला है तो आप कृपया कॉल ना करें और अपने दूसरे साथियों को मौका दें जिनकी फ़ोन कॉल कार्यक्रम में नहीं मिली है हाल फिलहाल।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है।

0: नाम जान सकता हूँ?
1: हाँ जी, मैं उषा मलिक बोल रही हूँ।
0: अच्छा, उषा मलिक, आपको नमस्कार। तो मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
1: हाँ जी सतीश जी,
0: तो
1: कैसे
0: आपके इधर
1: हैं?
0: रोहतक का मौसम कैसा है
1: बहुत
0: अभी गर्मी
1: गर्म
0: पड़ रही?
1: मौसम है, चिलचिलाती हुई धूप है, खूब बहुत ज़्यादा गर्मी है।
0: आज तो हवा चल रही है जैसे पूर्व दिशा से। हाँ,
1: अच्छा, तो
0: तो उसे नमी वाला हवा चल रही है। नमी पूर्व दिशा से हवा चलती है, पुरवाई जो
1: हाँ
0: बोलते हैं देहात में, पुरवाई बोलते हैं। तो उसे नमी नमी वाली हवा चलती है, जो पछिया चलता है वो उसी गर्म हवा चलती है। तो इसी मौसम में जैसे अभी तो कहना चाहता हूँ, जैसे खीरा है, ककड़ी है, कलीने है, तरबूज है, इनका सेवन करना चाहिए। और पक्षियों को पानी कहीं भी घरों के छत पे रखना चाहिए, क्योंकि
1: बिल्कुल रखना
0: और
1: चाहिए,
0: जानवर
1: बिल्कुल रखना
0: जानवर
1: चाहिए,
0: को ख्याल रखना चाहिए। चारा पानी टाइम से देना चाहिए, पानी
1: बिल्कुल
0: पानी ज़्यादा ज़्यादा पीना चाहिए। ये
1: बिल्कुल
0: कहना चाहता हूँ मैडम जी।
1: बिल्कुल सही बातें बताई आपने, पशु पक्षियों के बारे में और अपने बारे में भी बहुत सारी आपने जो बातें बताई उनका श्रोता
0: और
1: बंधु ध्यान
0: आकाशवाणी
1: रखते
0: के
1: होंगे।
0: 90 90 बरस हो चुके हैं, तो आकाशवाणी मुझे यही सिखाती है, क्योंकि ये ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो आकाशवाणी धन्य मानता हूँ आकाशवाणी, ये बहुत कुछ सिखाता है, ये सिखाती है आकाशवाणी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जीवन में पॉजिटिविटी लाती है और जानकारियां देती है, मनोरंजन करती है आकाशवाणी आप सभी का। जी, कौन सा गीत सुनेंगे सतीश जी
0: तो
1: आज?
0: आज वो गाना प्ले कर दीजिए, मूवी का नाम राजा हिंदुस्तानी। गाने बोले कोई, उसमें कोई से अपने सिलेक्ट का गाना सुनवा दीजिए। सारे गाने बढ़िया हैं, जो
1: जी
0: अच्छा लगे
1: जी
0: उसको सुनवा दीजिए।
1: बिल्कुल सुनवा देंगे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: और देखते हैं अब कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं अपने सुनने वालों की पसंद पर। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है बहुत बहुत कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग मैम जी, मैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से।
0: श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ से
1: जी।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैम दिल्ली में काम करते हैं, बस अभी काम पे जा रहे हैं, स्टेशन पे ही हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, और साथ ही आनंद लेते हैं रेडियो का भी। फोन के माध्यम से आप सुन रहे हैं?
1: हाँ जी मैम, ऐसे मैम न्यूज से।
0: और आपको रेडियो का शौक कब से है?
1: मैम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं।
0: चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, घर में बड़े सुनते थे तो उन्हीं से आपको आदत पड़ी होगी।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी मैम, फिल्म का नाम कटे पतंग, जिस गली में तेरा घर ना हो बात।
0: हाँ जी बिल्कुल, सुनवाते।

0: और इसी तरह आप जुड़े रहे आकाशवाणी के साथ।
1: हाँ जी
0: जी,
1: धन्यवाद आपका।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्कार उषा मलिक जी। विजय
0: नमस्कार जी। बहुत स्वागत है आपका। नाम बता दीजिए अपना।
1: सिंह लखेरा बोल रहा हूँ जी, वीर भूमि खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़ से जी।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है मैम जी। और आकाशवाणी परिवार कैसा है जी?
0: आकाशवाणी परिवार भी अच्छा है। और गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, देखिए आपसे मिलने हमेशा चले आते हैं
1: जी, ये तो आपका बड़प्पन है जी। और गर्मी में इतनी मेहनत करते हैं जी, सर्दियों में, बरसात में,
0: जी।
1: इसके से क्या कर रहे
0: सब अपने सुनने वालों के लिए, बस सुनने
1: जी।
0: वालों के लिए, है ना?
1: ये तो
0: तो
1: एक दूसरे के पूरक है जी। हम भी गर्मी में आपके
0: बिल्कुल
1: प्रोग्रामों का इंतजार करते हैं जी।
0: बिल्कुल, श्रोताओं के बिना देखिए फिर कार्यक्रमों का वजूद नहीं है, है ना?
1: जी, ये
0: श्रोताओं
1: दोनों
0: से
1: एक
0: ही
1: दूसरे के पूरक है जी। आकाशवाणी श्रोता के बगैर, श्रोता आकाशवाणी के बगैर जी,
0: बिल्कुल
1: ये दोनों जी।
0: बिल्कुल। तो आपको कार्यक्रम सही सुनाई दे रहे हैं मीडियम वेव
1: मैम
0: पर?
1: अभी मीडियम वेव पर मैम, आज अभी तो काफी देर से प्रोग्राम नहीं आया था, मैं तो नेट के माध्यम से सुन रहा हूँ जी।
0: जी, तो जिस तरह भी आप सुन पाए जरूर आकाशवाणी से जुड़े रहें।
1: बिल्कुल आकाशवाणी जुड़ा रहता हूँ जी, चाहे वो मीडियम वेव से हो या एप्लीकेशन के माध्यम से हो जी, ऐसे जुड़े रहते हैं जी।
0: जी, बहुत
1: और
0: खूब।
1: मैम ज्यादा फिर वक्त नहीं लेते, मैं फिल्म का नाम बताता हूँ।
0: हाँ
1: फिल्म का
0: जी,
1: नाम है जी काला पत्थर। और उसमें एक खूबसूरत गीत है, जिंदगी एक रास्ता जो थम गए तो कुछ नहीं
0: बिल्कुल, एक रास्ता है जिंदगी, जरूर सुनवाएंगे और खूबसूरत संदेश देता है गीत, हम सभी सुनने
1: जी।
0: वालों को जो है पसंद आएगा, सुनवाते हैं।
1: सर नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, धन्यवाद।

0: चलते रहने का नाम ही तो है जिंदगी, जो रुक जाए वो जिंदगी कहाँ। कई रंगों से भरी हुई होती है ये, कई रूपों से सजी होती है, कई ताने बाने बुन लेती है ये, कई रिश्तों से बंधी होती है। कच्चे डोर से बंधा एक एहसास से जिंदगी, जहाँ एहसास नहीं वो जिंदगी नहीं। खट्टे मीठे कितने अनुभव कराती है ये, कभी गिराती है कभी उठाती है ये, कितनी भी शह क्यों न हो एक नई रोशनी की किरण दिखाती है ये। जी हाँ, ऐसी ही है ज़िंदगी और चलने का नाम ही ज़िंदगी। इसी तरह का गीत हमने आपने सुना मिलकर, और अब देखते हैं हमारे साथ कौन साथी जुड़ चुके हैं। हेलो
1: मेरे प्यारे प्यारे मैम को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं ग्राम गुनोरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ, और मेरा मैम कॉल पहली बार लगाया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: और हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारी महिला श्रोता भी कोशिश करती हैं और उनका नंबर भी आता है, कम है संख्या लेकिन वो जुड़ती हैं कार्यक्रमों से, काम में बिजी भी रहती हैं। और बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है अंदाज और गाने के बोले जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे कल क्या हो किसने जाना, ऐसा करके गाने के बोले।
0: तो तनुश्री सुनवाते हैं, बहुत खूबसूरत गीत है आपको। और आप रेडियो कब से सुनती हैं?
1: जी मैम, मुझे रेडियो का तो सच्ची बताओ तो मुझे मालूम नहीं था, पर मतलब मुझे दिखाई देता तब से मैं स्कूल में जाती थी तो रेडियो को जितना मालूम नहीं था, पर अब मुझे दिखाई देना बंद हो गया तो रेडियो से मैं जुड़ी हूँ।
0: बिल्कुल, आप सुनती हैं और हमेशा सुनती रहें, और मन की आंखों से आप सारा संसार देखती हैं। और ज़रूर, यदि किसी चीज़ की देखिए हमारे शरीर में कमी होती है तो कुछ ना कुछ खूबी भी हमें देता है वो ईश्वर। तो आप अपना ध्यान रखें और रेडियो से भी लगातार जुड़ी रहें।
1: ओके, बाय
0: बाय, धन्यवाद।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: और श्रोता काफी देर से लाइन पर हैं और जल्दी से जानते हैं इनका नाम और इनकी पसंद का गीत। हेलो,
1: आदरणीय दीदी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। कौन सा गीत सुनेंगे और नाम बताइए अपना।
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा था दीदी।
0: हाँ जी,
1: तो सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, खासकर मुस्लिम भाइयों को आज के उनके एक पाक और नेक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। ईद का आज पवित्र मौका है
0: जी, सभी तक आपकी भावनाएं पहुंची और बताइए।
1: आज या तो बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना हमें सुना दी, या फिर एक गाना और है, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का
0: जी, और बरसात की रात फिल्म का ये गीत है, हमने आपके लिए निकाल लिया है
1: जी,
0: तो सुनवा दें। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस दीदी यही कहना चाहेंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा है और श्रोताओं से यही निवेदन है कि वो अपना सावधानी बरते रखें, घर से निकलते समय पानी की बोतल, गमछा
0: बिल्कुल
1: साथ के चलें, और घर में एंट्री देते ही कूलर और एसी और ठंडे पेय का प्रयोग न करें।
0: जी बिल्कुल, पानी का पर्याप्त प्रयोग करें, पानी पीते रहें, कोई भी लिक्विड चीज आप वो लेते रहें,
1: लेकिन
0: और घर की
1: पानी जैसे बाहर से आए तो पसीने में पानी न पिए,
0: बिल्कुल भी ना पिए, और सिर को तो हमेशा ही ढक कर रखें बाहर जाते वक्त।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सुनते हैं अब आपकी पसंद का गीत। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू दीदी, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी रोहतक से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक, और देखते हैं हेलो रोहतक में अगली कॉल हमारे किन श्रोता की मिली है। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, परिचय दीजिएगा।
1: गुजरात से आपका नेम श्रोता धीरज रबारी बात कर रहा हूँ।
0: नाम एक बार फिर से बताएंगे।
1: धीरज रबारी आपका नेम श्रोता बात कर रहा हूँ।
0: धीरज अम्बा जी, और कैसा है आपके गुजरात में मौसम?
1: मौसम तो देखा जाए तो भारत में सभी जगह पर गर्मी है और यहाँ भी गर्मी है। मैंने देखा जाए तो 42 से 45 के अंदर गर्मी रहती है।
0: अच्छा।
1: और इस कड़ी धूप में जो काम करने वाले करते रहते हैं और सब सबकी भूमिका अपनी अदा करते हैं देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने घर के लिए।
0: बिल्कुल,
1: और वैसे
0: बिल्कुल।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए।
1: जिला गुना एमपी तहसील मधुसूदनगढ़ ग्राम कीताकली से अमर सिंह साहू बोल रहा हूँ मैम।
0: हाँ जी,

0: अमर सिंह जी कैसे हैं?
1: अच्छे मैम। और गर्मी पड़ रही है तो गर्मी को आनंद ले रहे हैं। हाँ
0: हाँ बिल्कुल, आनंद तो देखिए हर मौसम का लेना ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो, है ना।
1: और
0: हाँ
1: बाकी इतनी गर्मी पड़ रही मैम।
0: बिल्कुल, खूब गर्मी पड़ रही है और ये ज़रूरी भी है हमारी धरती के लिए, हमारे मौसम के लिए, क्योंकि गर्मी पड़ेगी तभी तो बरसात आएगी
1: जी मैम बिल्कुल बिल्कुल
0: और धरती से भी हानिकारक जो जीव हैं वो नष्ट होंगे, फसल बोने
1: जी
0: से
1: मैम
0: पहले वो फायदेमंद रहेगा। फिर तो कौन
1: जी
0: सा गीत
1: मैम।
0: सुनेंगे आज?
1: मूवी का नाम है दूजे के लिए, गाने के बोले तेरे मेरे बीच में कैसा है बता अनजाना।
0: हाँ तो गीत,
1: और आपको और इन सभी को जो गाना डेडिकेट रहेगा जितने सुनने वालों को सभी को।
0: बिल्कुल हमारे और आपके बीच में, श्रोताओं के और रेडियो के बीच में ऐसा ही संबंध है, अनजाना सा, है ना।
1: जी मैम बिल्कुल बिल्कुल मैम
0: तो गर्मी का आप आनंद ले रहे हैं ऐसा आपने कहा, तो ज़रूर आनंद लें। और देखिए जो मौसमी फल सब्जियां हैं उनका आप प्रयोग करें, ठंडी तासीर
1: जी
0: की जो
1: मैम
0: सब्जियां हैं और रस वाले जो फल हैं तो उनका प्रयोग करें और गर्मी से अपना बचाव रखें, तो ये मौसम भी ऐसे ही बीत जाएगा हंसी खुशी।
1: जी मैम बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ तो सुनवा दें आपको आपकी पसंद का गीत।
1: धन्यवाद। और धन्यवाद मैम धन्यवाद नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।

0: गायकों की सुरमई आवाजें और साथ में देश के अलग अलग प्रदेशों से जुड़ती हुई हमारे श्रोताओं की आवाजें, दोनों जब मिलते हैं तो कार्यक्रम का अंदाज महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब दिल की आवाज का मिलन होता है कार्यक्रम में और सुर के अंदाज भी जब मिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम बनकर फिजाओं में महकता है और हमें और आप सभी को सुहाना लगता है। और इसी तरह ये कार्यक्रम आपके साथ हम लेकर आते रहें, इन्हीं सब भावनाओं के साथ, इन्हीं सब बातों, शब्दों, गीतों के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी उषा मलिक को आज का हेलो रोहतक कार्यक्रम यहीं समेटने की। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। 10 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्र ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसे

0: बकरीद भी कहा जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
1: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हम राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, including ration transport, dealer support and technology upgrades, till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
4: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system through the use of technology.
3: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
2: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 km of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security-related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling. The festival of sacrifice, Eid al-Adha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. The faithfuls are offering Eid prayers in Eidgahs and grand mosques. In national capital Delhi, main Eid prayers congregations are being held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion. In a message, the president said that the festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. Prime Minister Narendra Modi has greeted people on the occasion of Eid al-Adha. In a social media post, Mr. Modi hoped that the occasion will deepen the spirit of brotherhood and happiness in the society. He also prayed for everyone's success and good health. Prime Minister Narendra Modi today remembered Veer Savarkar on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Modi said, "The courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people." The Prime Minister said Veer Savarkar's intellect and emphasis on social reform are also noteworthy. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Tomorrow, Rajasthan Royals will take on Gujarat Titans in qualifier 2 for a place in the final. The final match will be played on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Earlier, Royal Challengers Bengaluru stormed into the final, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier 1 match at Dharamshala on Tuesday. In Norway chess, R. Pragyananda defeated the Norwegian world number 1 Magnus Carlsen, gripping the contest to claim 3 full points in round 3 of the tournament yesterday. In contrast, world champion D. Gukesh continued to endure a difficult run, suffering another setback after losing to Alireza Firuza in the final game. And that is the end of this news bulletin.
5: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:10 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी है। मीडियम वेव 262.47 मीटर पर दिन में 12:30 पर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:17 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत कर रहे हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम से।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
3: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
3: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
3: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
3: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है।

0: इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी।
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
7: माँ, माँ।
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
6: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
6: ऐसे नहीं,
7: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
8: अरे योगेंद्र,
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
6: हाँ माँ, और माँ इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
3: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
6: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है।

0: भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
1: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब।
2: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हथगोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।

घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे। उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, उसके बाद प्रादेशिक समाचार हमारे चंडीगढ़ केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर दो मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अब खेल में रुचि रखने वाले बच्चों की ग्रामीण स्तर पर पहचान की जाएगी और उन्हें अपनी पसंद के खेल में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए पंचायत, स्कूल और खेल विभाग घनिष्ठ तालमेल से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन 2047 के तहत खेल विभाग के 5 साल के रोडमैप और कार्य योजना की समीक्षा करने के बाद ये बात कही। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंचायत, स्कूल और खेल विभाग संयुक्त रूप से इस उद्देश्य के लिए एक कार्य योजना तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि गांवों में स्टेडियम बनाए जाएं, ताकि जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के परिसरों का उपयोग भी खेलों के लिए किया जाएगा। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ओलंपिक 2036 के लिए दीर्घकालिक योजना जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए 10 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान की जाएगी, उनके खेल हितों को परिष्कृत किया जाएगा और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद उल अजहा का त्यौहार श्रद्धा, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र, पलवल और फरीदाबाद जिले से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिले में सुबह शहरी और ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों तथा ईदगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। सभी ने मिलकर नमाज अदा की और देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश के किसानों को खेतों में सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस पंप की कुल लागत का 30% केंद्र सरकार और 45% राज्य सरकार देती है। किसान को केवल अपनी तरफ से 25% राशि का भुगतान करना होता है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के सौर ऊर्जा पंप लगा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने वाले जींद के गांव रदाना के प्रगतिशील किसान दलबीर चहल ने बताया।
1: प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो है सोलर पंप हमने लिया था गवर्नमेंट की तरफ से करीब 3-4 साल पहले। बहुत अच्छी योजना है। तो ये जो सोलर पंप है ये किसानों के लिए एक वरदान है, ना किसी प्रकार का कोई प्रदूषण है और करीब करीब 12 घंटे हमें सुविधा मिलती है। हमें दिन में पानी मिलता है, रात को लाइट कभी आती है कभी नहीं आती, ये भी काफी परेशानी थी और कट वगैरह होते थे। सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप सोलर पंप का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें।
0: प्यूत करनाल असंध टोल प्लाजा पर बीटेक छात्र योगराज पर 26 मई की रात हुए जानलेवा हमले के मामले में निसिंग थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में टोल प्लाजा पर तैनात लगभग 10 कर्मचारियों द्वारा छात्र पर बेरहमी से हमला किए जाने का आरोप है। पीड़ित पक्ष के अनुसार छात्र योगराज अपने साथियों के साथ वाहन में सवार था। वाहन स्थानीय टोल फ्री श्रेणी में आता था। आरोप है कि टोल प्लाजा पर बिना वर्दी और बिना नेम प्लेट ड्यूटी कर रहे कुछ युवकों ने ईंटों, डंडों और लोहे के रॉड से हमला कर छात्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद घायल छात्र को पहले करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। छात्र की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 30 मई को प्रदेश भर में दूसरी हेरिटेज एंड सिटी वॉक का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों और महिलाओं को प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जोड़ना है। हरियाणा पर्यटन निगम के सहायक महाप्रबंधक हरविंदर यादव ने बताया कि आओ चलें अपने विरासत के साथ अभियान के तहत सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 7 प्रमुख स्थलों पर वॉक आयोजित होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
2: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके दोस्त शशि का प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत अभी आपने सुना फिल्म गुलामी से। गीत गुलजार का लिखा था, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं नमकीन फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार की है। गुलजार का लिखा गीत है, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आंधी फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत गुलजार का लिखा है, संगीत है आर डी बर्मन का।

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत निदा फाजली का है, संगीत उषा खन्ना का।

0: चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम जारी रहेगा, समय है कुछ विज्ञापनों का।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। गृह प्रवेश फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में। गीत गुलजार का लिखा है, संगीत है कन्नू रॉय का।

भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में गीत अभी आपने सुना फिल्म गृह प्रवेश से। परिचय फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार का गाया, गुलजार का लिखा गीत है, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आविष्कार फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज़ में। इस गीत के गीतकार हैं कपिल कुमार, संगीत कन्नू रॉय का है।

तपस्या फिल्म का गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाज़ों में। गीत एमजी हसमत का है, संगीत रविंद्र जैन का।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में आपको सुनवाते हैं जुर्माना फिल्म का गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं बावर्ची फिल्म से। आवाज़ मन्ना डे की है, गीत कैफी आज़मी का है, संगीत मदन मोहन का।

इस गीत के साथ ही शशि को दीजिए इजाजत कार्यक्रम चित्रपट संगीत संपन्न करने की। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, दोपहर के 2 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: the headlines. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. Eid ul Azha, festival of sacrifice, being celebrated with religious fervour across the country. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. President Draupadi Murmu today urged the police force to become more citizen-centric and sensitive while dealing with vulnerable sections, especially women, the poor and children. President Murmu was speaking after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok this morning. She appreciated the role of the Sikkim police in maintaining law and order and in disaster management.
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
0: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. The announcement was made during the convocation ceremony of Sikkim University in Gangtok yesterday in the presence of President Murmu. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today assured resolution of all grievances of students regarding discrepancies and technical glitches in CBSE Class 12 examination evaluation process and its newly introduced on-screen marking OSM system. Mr. Pradhan said the OSM system is a progressive instrument aimed at ensuring greater transparency. He was speaking to media after holding a meeting with CBSE officials in New Delhi. The minister said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability is maintained at all levels.
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले.
3: Children should receive transparent information about their marks. Through scan copies, the answer sheets should reach them transparently. This is a provision under the OSM system. For the first time in the country, CBSE has implemented this system. Some discrepancies have come to notice in it. I take responsibility for this and it will be corrected properly. We will make sure that no genuine query raised by any student remains unanswered.
0: The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET-UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid al-Azha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates, whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month, will be released soon. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said the country has ample food stocks due to relentless efforts of the country's hard-working farmers. Mr. Chauhan was speaking at the inaugural ceremony of the two-day National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi today. The minister highlighted that the estimated food grain production in the country this year is over 376 million tons, which is 5.3% higher than last year. The minister also said the two-day event will help in setting a roadmap for the welfare of the Kharif agriculture sector. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Spanish counterpart, Jose Manuel Alvarez, on the sidelines of the informal meeting of the EU Foreign Affairs Ministers, Gymnich, in Cyprus today. In a social media post, Dr. Jaishankar said the meeting involved discussions on the next steps for trade, technology, defence and people-to-people ties between India and Spain. Dr. Jaishankar also appreciated Mr. Alvarez's views on ongoing global and regional developments. The External Affairs Minister reached Cyprus today to take part in the meeting. India and China have reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with the progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held in Beijing yesterday. The Ministry of External Affairs said the discussions were constructive and forward-looking. The two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has announced his resignation from the post. He will submit his resignation this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed about Mr. Siddaramaiah's decision after attending the breakfast meeting hosted by Mr. Siddaramaiah for his cabinet colleagues at the Chief Minister's residence today. Mr. Patil said the move came following directions from the Congress High Command. He also announced that Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar will take over as the new Chief Minister. Mr. D.K. Shivakumar was also present in the meeting. More from our correspondent.
4: The symbolic hug by Siddaramaiah and D.K. Shivakumar during the breakfast meeting today said it all. It drew curtain on the speculation about the resignation by Siddaramaiah. Chief Minister Office has informed that Siddaramaiah will go to Lok Bhavan at 2:30 p.m. today and address media persons at 3 p.m. In the absence of Governor, who is on tour, the resignation will be handed over to the Secretary. The longest-serving Chief Minister, including a full 5 years term from 2013-18 and 3 years in this second term since May 2023, Siddaramaiah will hand over reins to D.K. Shivakumar finally for a remaining period of 2 years. Swearing in and cabinet reshuffle remains to be decided now. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
0: The Bharatiya Janata Party today announced the appointment of new state unit presidents for three states and national capital Delhi. BJP National President Nitin Naveen has appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi Unit President. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP Chief, and Keval Singh Dhillon will be the new President of the Punjab BJP. Abhishek Dev Roy has been appointed as Tripura BJP President. The West Bengal government has intensified measures against illegal infiltration under its Detect, Delete, Deport policy. Our correspondent reports that infiltrators are being detained and deported to Bangladesh after completion of legal formalities. Officials said around 50 Bangladeshi nationals were reported at the Hakimpur checkpost in Swarupnagar of North 24 Barganas today, seeking to return home. Around 350 people are currently housed in three holding centres in the area awaiting deportation. Security and surveillance have also been strengthened in border areas to check illegal infiltration. In Bihar, eight people were killed across the state following a wave of severe thunderstorms, lightning strikes and hailstorms. Chief Minister Samrat Chaudhary announced ex gratia compensation of 4 lakh rupees each to the next of kin of the deceased. Meanwhile, the India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for severe heat wave conditions over eastern Madhya Pradesh and Vidarbha today. Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh today. The Met Department further predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry for the day. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar. popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. Prime Minister Modi in his message said the courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people. Home Minister said, a fearless warrior of the freedom struggle, Veer Savarkar dedicated his entire life to the service of the motherland. The festival of sacrifice, Eid ul-Adha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. Eid ul-Adha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. In the national capital, main congregations were held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Reports of Eid prayer congregations are also pouring in from other parts of the country. Elaborate security arrangements have been made for the occasion. In West Bengal, lakhs of devotees offering prayers at mosques and Eidgahs. Our correspondent has the details.
5: In Kolkata, the Eid prayers were held at the Brigade Parade Ground instead of the traditional Red Road. At the historic Nakhoda Mosque, prayers were conducted in two sessions, ensuring roads remained clear. The state government has strictly enforced the old Calcutta High Court directive, urging peace and discipline during the festivities. Millions gathered at more than 5,000 mosques and prayer grounds in Murshidabad. In Malda, the state's second largest congregation took place at Sujapur's Noy Mauja Idgah. Large gatherings were also reported in Nodia, North 24 Parganas and South 24 Parganas, with women joining prayers in many locations.
6: Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: Cities across Madhya Pradesh are celebrating Eid ul-Adha today in a peaceful and joyful atmosphere. We have a report.
7: In Bhopal, thousands gathered at the historic Tajul Masjid for special prayers. The Imam prayed for unity, brotherhood and progress in the country. A heartwarming scene came from Indore. Following a 50-year-old tradition, a Hindu family welcomed the city Qazi with a garland of flowers. They then took him to the Eidgah in a decorated carriage. In Gwalior, people from other faiths also gathered outside mosques to greet the Muslim community. Meanwhile, the Madhya Pradesh Waqf Board has issued important guidelines for the animal sacrifice. People have been asked not to post photos or videos of the sacrifice on social media so that the communal harmony is preserved. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down four Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Satvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last eight after Thailand's world number two Kunlavut Vidithsarn retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
8: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Kanak Lata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
8: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
8: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
9: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
8: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
10: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के चार ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
8: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
11: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
8: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
12: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से।

0: फी नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
2: आज श्रीलंका में ईद उल अज़हा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान।

0: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाई ने बलजीत भाई के राम राम भाई। देखो यू अपना मई का महीना भाई 2-4 दिन रह रहे हैं और जून के महीने की शुरुआत हो जाएगी। काम तो यूँ तो सारा साल किसान भाइयों दो रह ही रहे हैं क्योंकि खेत क्यार जो है खाली नहीं छोड़ा जा सकता और हर समय जो है कोई न कोई फसल है, कोई न कोई काम है। और ना तो भाई अपना मिट्टी परीक्षण का काम है या फिर अपना खेत ने एकसारकरण का काम है, जुताई करने का काम है भाई, अपनी जो चारा वाली फसलें हैं उनके लिए है, तो सारे काम अपना चल दे रहे हैं। लेकिन यू जो महीना भाई अपना ईवान वाला है तो इसमें और भी ज़्यादा काम शुरुआत हो जाएगी। काम तो इसमें भी है, कपास की निराई गुड़ाई का है, गन्ने की निराई गुड़ाई का है भाई, सिंचाई के काम चल दे रहे हैं और जो भाई अपना साग सब्जी वाली फसलें ले रहे हैं उनके लिए तो भाई हर दिन के लिए काम है ज़रूरी हो जाए। तो इसमें देखो कपास की बात करें हम, देखो कपास में ऐसा हो है कि भाई पानी, पहला पानी की बात करें तो पहला पानी जितना लेट करा जाओ उतना बढ़िया हो है, लेकिन इतना भी लेट ना करा जाए कि हमारी फसल ना नुकसान हो जाए। सवेरे के टाइम पे अगर हम जाके देखा अपने खेत में और पत्ते मुरझाए हुए दिखाई दे हैं कपास की फसल के, तो फिर सोच लो कि भाई पानी इसमें देना पड़ेगा, इनके सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी और फसल जो है पानी मांग रही है। ऐसा नहीं है कि भाई दोपहर के टाइम पर जाओ हम जब देखें और पत्ते मुरझाए दिखे तो हम सोच लें कि भाई पानी की ज़रूरत है, दोपहर के वक्त नहीं भाई सवेरे के टाइम पर जब जाके देखेंगे और उस टाइम पर पत्ते मुरझाए लागे हैं तो समझें कि भाई सिंचाई की हमने आवश्यकता है अपनी फसल के अंदर। इसी प्रकार से भाई बैसाखी मूँग है या अपना देखें कि भाई जो अपनी फलियाँ पक रही हैं उन्हें तोड़ लें और कटाई के लिए तैयारी करें, क्योंकि अगली जो फसल हमने लेनी है उसके लिए भी भाई खेत खाली होना ज़रूरी है और बीच में जो अपना बाज जोत कर तैयार भी करना है खेत, तो सावनी जो फसल लेनी है उसके लिए खेत खाली हो जाए, तो बैसाखी जो मूँग दे रखी है उसकी फलियाँ की भी अपना तुड़ाई करें। बाकी भाई गन्ना फसल है उसमें भी निराई गुड़ाई, खरपतवार ताकि उसमें ना हो नड़ा पता चलने जाओ उसमें, और फिर जो है सिंचाई करना, सिंचाई का ध्यान हमने कपास की फसल में भी ध्यान रखना है कि भाई निराई गुड़ाई करने के बाद ही इसमें हम सिंचाई करें ताकि खरपतवार उसमें ना रह पाए। अगला जो है धान की रोपाई, भाई यूँ तो सिफारिश या करीजा है कि जीत अपने दौरे पानी पात के साधन ठीक ठाक हैं तो उस जगह पर हम धान लेवें, लेकिन भाई लोभ हो जाए भाइयों ने कि जीत अपने दौरे पानी पात के सही साधन नहीं हैं तो उड़े भी हम धान की फसल लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा हक गलत हो जाए है क्योंकि भाई पानी की बड़ी किल्लत हो जाए फिर, और जो अपनी फसल है जिसमें हम जितनी मेहनत करें हैं खर्चा भी लाए हैं वो फिर अपना पूरा नहीं हो पाता, तो इसलिए पानीपात के साधन ट्यूबवेल के साधन अपने दो रहे हैं तो धान की फसल का लोभ करें। बाकी धान की फसल की अगर सिंचाई के इलाके की बात करें तो भाई अगले महीने तक इसकी हम रोपाई की भी तैयारी कर सके हैं, भाई जित अपनी प्यौध तैयार हो गई है, एक बिलात की प्यौध हो जाए है तो उस जगह में अपना धान की फसल की रोपाई की शुरुआत कर दें। बाकी जो थोड़ा हा पानीपात के थोड़े कम साधन है या प्यौध भाई थोड़ी लेट सेट हुआ है थोड़े प्यौध की हम बिजाई नर्सरी में भी तय करने लाग रहे हैं तो उसमें भी अपना किस्मा का ध्यान रखें, बीज ने साफ सुथरा करके उपचारित करके फिर जो है कैरिया मामिस की बिजाई करें। बाकी चारा वाली फसलों की भाई लोबिए की काश्त चचारी के लिए अगर हमने लेनी है, मक्का है ज्वार है उनकी हम काश्ते भी कर सके हैं। बाकी रही बात साग सब्जी वाली फसलों की तो भाई इनमें तो ऐसा है कि जो अपनी तैयार फसलें हैं उन्हें तोड़ कर बाज़ार में भेजें लेकिन कच्ची अवस्था में तोड़ें, पकाई की अगर अवस्था हो जाए तो फिर दिक्कत आ उनके भाव हमें अच्छे नहीं मिलते। सिंचाई का हमने ध्यान रखना है लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखना है कि भाई खेत क्यार में अगर हम काम करें धूप अच्छी पड़े है जेठ का तत्व ग्रह खूब और इनके दो जेठ जो है बताइए हैं तो इसमें तापमान इतना ऊँचा होता चला जाए है कि खेत में काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन करना पड़े है तो इसके लिए भी अपना थोड़ा प्रबंध बांध है कि भाई अपना सिर पर जो है अच्छा लत्ता लुगड़ा रखें, पानी पात का जो है अपना सही तरीके से प्रबंध कर लें और कोशिश करें कि भाई शिखर दोपहरी में खेत में काम ना करें, सवेरे काम कर लें 10-11 बजे तक काम करके फिर अपना घर पे और फिर सांझ के टाइम पर अपना खेत में जाएं तो या जो दोपहर का जो तापमान है उस तक हम बच जाएंगे और इस तक हमने अपना आपा भी बचाना है, बच्चे भी बचाने हैं और अपना जो पशुधन है उसको भी बचाना है। पशुधन का भी बहुत ध्यान रखना है क्योंकि भाई तालाब अगर गाँव में है अपना उपलब्ध है साफ़ सुथरा पानी है तो उसमें लिटा कर ज़रूर ले आएँ और पशु ने भी कई बार पानी पिलाएँ साफ और ताज़ा पानी पिलाने की कोशिश करें, जितना उसके दिन में कई बार पानी पशुवाती दिखाएं। नहलाने धुलाने की, क्योंकि भैंसा का तो ऐसा काम हो जाए भाई, कई बार जो है नहलानी धुलानी और इनका थोड़ा ऐसा काम हुआ है कि भाई जोड़ में लोटे में ना थोड़ा पेटा हानि भरदा, तो अगर तालाब है उपलब्ध तो ज़रूर जो है तालाब में भैंसा ने लेटा कर ज़रूर ले आवें। और आज जो अपना चर्चा का विषय है वह है बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल। तो भाई पहले हम भैया का मनोरंजन करा देंगे, उसके बाद फिर जो है भैया ने इसके बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। तो पहले हम भैया का मनोरंजन कराऊंगे, रागनी सुनाऊंगे भाइयों को, गायक कलाकार होंगे राजबीर सिंह भारद्वाज।
1: सुदामा मिश्रानी को जवाब देता है, अपने कुल के बारे में बताता है।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो भाई भैया ने रागिनी भी सुन ली, गाय कलाकार थे राजबीर सिंह भारद्वाज, इनकी गाय और भैया ने एक रागनी और भी सुनाऊंगे, लेकिन जो जिक्र हमने कराया था कि भाई जो बेल वाली सब्जी फसलें हैं उनकी देखभाल का, तो तरबूज और खरबूजा ये जो है अपनी फसल तैयार हो रही है, इन्हें तोड़ के बाज़ार में भेजें, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब ये पकनी शुरू हों तो खेत में सिंचाई नहीं करनी चाहिए हमने, क्योंकि अगर पकाई अवस्था में इनकी सिंचाई कर दी तो फिर इनमें मीठापन जो है वो कम हो जाया करे। तो अपना तैयार कर लें और भाई अपना तुड़ाई करके और सारी फसल ना अपनी इन्हें बाज़ार में भेजें, खेत भी खाली करने का जो है समय आ गया है, क्योंकि अगली जो हमने खरीफ की फसलें लेनी है उसके लिए खेत भी तैयार करना हो है। दूसरी जो खरीफ की फसलें हैं जिनमें बात करा हम, जो कद्दू जाति की और भी सब्जी आ जाए हैं, सब्जी फसलें आ जाए बेल वाली जाति में, तो लौकी है, तोरी है, करेला, टिंडा और ये बहुत सी जो फसलें हैं इनकी हम तैयारी करें, क्योंकि अगली हमने जो फसल लेनी है उसके लिए। बाकी जो चाल रही हाल में भाई, लौकी की फसल है, करेले की है, तोरी की है, टिंडे वाली फसलें हैं भाई, खीरा है, तो इनकी हम नियमित रूप से सिंचाई करें, क्योंकि तापमान बढ़ता जा है, तापमान बढ़ते समय जो है हमने सिंचाई करनी है, और सिंचाई में भी हमने ध्यान देना है कि भाई किसी टाइम भी सिंचाई नहीं करनी हमने, अगर भाई ठायर किसी टाइम भी हम सिंचाई कर दें, सवेरे के टाइम पर या फिर शाम के समय पे हमने सिंचाई करनी है, उसके तो सवेरे के टाइम पे सिंचाई करें, दिन में इनकी सिंचाई ना करें। बाकी जो खरीफ की बेल वाली जो फसल हैं दूसरी, उनके लिए भाई अपना खेत की तैयारी हमने इस महीने करनी है, और तैयारी भी करनी है, आगे फसल भी हमने इनकी लेनी है, तो खेत तैयार कर दिया ना भाई, जितना भी अपने दौरे देसी खाद है लेकिन हो तैयार खाद, कच्ची खाद ना हो, वो अपना खेत में देनी है। और जब आम खेत की बात करें, हमें जो औसत हमारा खाद की हो आग्रह है रासायनिक खाद की, तो भाई 25 किलोग्राम किसान खाद दे दें या फिर 12 किलोग्राम हम यूरिया इसमें देश के हैं भाई, इसमें 60 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 16 किलोग्राम म्यूरेटो पोटास, अगर हमने मिट्टी का परीक्षण नहीं करा रखा है तो, और ये हमने जो है नालियाँ में दे देनी है। जो कद्दू जाति की दूसरी जो अपनी फसलें हैं इनमें लाल बूंदी यानी कि लालड़ी का एक जो है वो जाकर इसमें आक्रमण, तो इससे बचाव के लिए हमने 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25% ताकत की दवाई है, या फिर हम 30 मिलीलीटर फैनवाल रेट ले सके हैं 20% ताकत की, 100 लीटर पानी मिलाकर ने और अपनी एक एकड़ की फसल पर हम इसका छिड़काव कर दें, तो फिर लाल जो लालड़ी है उससे अपना फसल का बचाव हो जाएगा। सफ़ेद चूर्णी रोग से बचाव के लिए हमने 8-10 किलोग्राम बारीक गंधक का जो है धूड़ा करना है, और धूड़ा जो है सुबह या शाम के टाइम पर हमने करना है, और इन फसला में जो है आल है, माइट्स है, सफ़ेद मक्खी है, रैतेला है, इसकी रोकथाम करने खातिर 250 मिलीलीटर मेलाथियान 50% ताकत की 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर है, और एक एकड़ की फसल पर हम इसका भी हम छिड़काव कर देंगे, तो जो अपनी सफ़ेद मक्खी है, रैतेला है, आल है या माइट्स है, इससे भी जो हमारी बेल वाली फसलें हैं इनका हमारा बचाव हो जाएगा। तो ये कुछ हमने सावधानी से बरतनी है, और खेत में अपनी फसलों को देखना है, उलट पुलट के बेला ने भी फड़ा ने भी देखते ज़रूर रहें। तो भाई समय बच गया तो जिक्र और भी करेंगे, लेकिन भैया ने एक राग नहीं और सुनवा दें। गायक कलाकार एक बार फिर होंगे राजबीर सिंह भारद्वाज।
3: किस्सा कृष्ण सुदामा, सुशीला सुदामा से टोटे का कारण पूछती है और क्या कहती है।

तो वे आखिर में यह कहेंगे कि जो अपनी बेल वाली सब्जी फसलें हैं उनमें एक तो खरपतवार ना उड़ दें और सिंचाई का जरूर ध्यान रखें, आगे चाल कर ने फिर मानसून आओगी बारिश हो जाए तो उस टाइम की तो बात अलग है, बाकी अपने खेत की नमी का हिसाब देख कर ने और इसमें सिंचाई का प्रबंध जरूर कर दे रहे, खरपतवार ना उड़ दें। और भाई इससे के साथ ही देख लें घड़ी का नया कार्यक्रम का समय समाप्त, चालेंगे सारे बण भैया ने, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर, प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। FM बैंड 103.5 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर शाम 5:30 पर तीसरी सभा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स, न्यूज़ोन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:30 और 16 सेकंड हो चुके हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे सभी श्रोताओं को अंजलि का नमस्कार।
1: अंजलि, आपके सभी युवा साथियों को अर्चना मिश्र का भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जो हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं, उनको भी नमस्कार। कौन से मेहमान हैं हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में, ये हम बताएंगे आपके साथियों को, युवा श्रोताओं को, थोड़ी देर के बाद। फिलहाल बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं?
0: जी मैम, कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वी डी सावरकर जयंती के बारे में। 28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में जन्मे वी डी सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक और समाज सुधारक थे।
1: अच्छा।
0: इन्होंने विदेशों में भारतीय छात्राओं के बीच क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।
1: तो आज इनकी जयंती पर हम इन्हें शत-शत नमन करते हैं। और कोई जानकारी है आपके पास?
0: जी मैम, अब हम बात कर लेते हैं अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय सुविधाओं में सरकारी अनुदान।
1: अच्छा, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे अपने साथियों को, बताइए।
0: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों को आवासीय अनुदान दिया जाता है।
1: अच्छा।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना, यह देश की सबसे बड़ी आवासीय योजना है। इसके तहत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, यह भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है।
1: बहुत अच्छी जानकारी है अंजलि, और ये हमने दो छोटी छोटी जानकारियां आपने युवा श्रोताओं को दी। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि आज हमारे बीच में एक विशेष मेहमान उपस्थित हैं, तो अंजलि, आज अपने इस कार्यक्रम में हम
0: विशेष
1: साक्षात्कार करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण किए प्रद्युमन सेठ के साथ। प्रद्युमन, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिसनर्स को भी सबको थैंक यू।
1: जी बिल्कुल। और युवा श्रोताओं, आज हमारे बीच प्रद्युमन सेठ हैं, और ये एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम, अनुशासन और धैर्य के बल पर यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। ये उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है इनकी, बल्कि समाज और देश सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इन्होंने ये सिद्ध किया है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प से हर लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युमन हमारे इस कार्यक्रम में। और पहला प्रश्न हम आपसे यही करेंगे कि आपने सिविल सर्विसेज चुनने का फैसला क्यों किया? क्या आपका इसमें बचपन से ही इंटरेस्ट था, या बाद में आपने देखा कि सिविल सर्विसेज में जाना अच्छा है, इस बहाने से, इस जरिए से हम देश की अच्छी सेवा कर सकते हैं?
2: जी, इसका मैं आंसर टू पार्ट्स देना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल, आप दो भागों में दी, पहला भाग बताएं।
2: जी, फर्स्ट तो मेरा बचपन से भी इंक्लिनेशन था, क्या थोड़ा फैमिली से, क्या टुवर्ड्स सीइंग पेरेंट्स and doing government services, which is not just in one part, but listening to people problem और उनके solution देना, जो कि बचपन से मेरे को influence लगा काफी।
1: अच्छा, लोगों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान करने में आपकी विशेष रुचि थी, क्योंकि आपने अपने फैमिली में ये देखा कि आपके जो माता पिता हैं वो इस तरह की जॉब में थे।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: अच्छा, तो ये भी पूछ लेते हैं कि आपके माता पिता क्या जॉब करते हैं, आप पिता के बारे में बताइए पहले।
2: जी, मेरे पिताजी ऑल इंडिया रेडियो में ऑफिसर रहे हैं, तो वो अच्छा। काफ़ी प्रोग्राम करते थे और डिफरेंट लोगों को बुलाते थे, जिनको मेरे को बाद में पता चला कि इतनी सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ जॉब्स हो सकती हैं, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, तो उससे मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मेरे को।
1: अच्छा, तो हम अपने युवा श्रोताओं को भी बता देते हैं कि प्रद्युमन ने बताया कि उनके पिताजी आकाशवाणी में कार्यरत रहे हैं, तो हमारे आकाशवाणी रोहतक पर भी इनके पिता डॉक्टर एसएस रंगा ने अपनी सेवाएं दी हैं, हमारा मार्गदर्शन किया है, और आज हमारा ये सौभाग्य है कि उनके पुत्र हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, और इन्होंने यूपीएससी की जो परीक्षा है उसको क्रैक किया है। तैयारी की शुरुआत कैसे की आपने प्रद्युमन?
2: जी, तैयारी की शुरुआत मैंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में कर दी थी।
1: अच्छा, जब आप ग्रेजुएट होने वाले थे?
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: अच्छा
2: जी, एक्चुअली 2020 मेरा 2021 का ग्रेजुएशन है, और 2020 में अगर कोरोना आ गया था। तो उस टाइम पे सब इंडोर ही हो गया था.
1: हाँ, सब कुछ इंडोर था.
2: तो उस टाइम पे मुझे लगा था क्या, हाउ आई कैन, मतलब इसको यूटिलाइज को कैसे किया जाए टाइम को. तो मुझे लगा था क्या उस टाइम पे, क्या मुझे गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जाना है. उस टाइम पे मेरा सेकंड वाला पार्ट आया था.
1: अच्छा.
2: क्या लोग काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उस टाइम पे, जो गवर्नमेंट थी वही फोरफ्रंट पे थी.
1: बिल्कुल.
2: तो मेरे को उससे मोटिवेशन आया क्या, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन सिविल सर्विसेज एंड आई वॉन्ट टू जॉइन द गवर्नमेंट. तो फिर 2020 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सिविल सर्विसेज के लिए.
1: गंभीरता से. वैसे तो आपने घर में बचपन में ही अपना माहौल देखा कि प्रॉब्लम्स को फिक्स करने वाला कोई जॉब आप करना चाहते थे, और उसके लिए सीरियसली गंभीरता से आपने अपने कदम कोविड के समय पे शुरू किए. वो एक अच्छा समय भी था. प्रद्युमन, घर पे रहते थे हम लोग, अच्छे से तैयारी कर सकते थे. हालांकि बाहर नहीं जा पाते थे ज़्यादा, लेकिन जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं या कुछ सीरियस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. अच्छा टाइम था ये.
2: हाँ जी, हाँ जी. उस टाइम पे मैंने एक कोट पढ़ा था, विंस्टन चर्चिल का था. उसमें लिखा था कि नेवर लेट अ डिजास्टर गो टू वेस्ट.
1: जी बिल्कुल. क्योंकि वैसे तो हम लोग अंदर से बहुत परेशान थे उस दौरान में, तनाव था, लेकिन हर चीज के अच्छे पहलू भी होते हैं.
2: हाँ जी, हाँ जी.
1: प्रकृति ने अपने आप को रिपेयर कर लिया. इसमें हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण का वो है थोड़ा सा नीचे चला गया, और आप जैसे बच्चे जो है वो अपनी तैयारी में जुट गए, ये इसका पॉजिटिव साइड रहा.
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: हाँ, बढ़िया. अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे हर रोज?
2: जी, मैं वैसे तो फर्स्ट में डेली टारगेट्स पे ज्यादा फोकस करता था. क्या मैंने अगर इतना काम मुझे करना है, क्या इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था इंस्टेड ऑफ डेली इतना घंटा पढ़ना है. तो वो आउटपुट्स मैं जरूर देता था क्या इतने टॉपिक हो जाए, बट करते ही करते 10 घंटे तो हो जाते थे एटलीस्ट डेली.
1: अच्छा, फिर उसको रिटेन करना भी एक चैलेंज होता है. प्रद्युमन, मान लो आपने पढ़ लिया, 10 घंटे आप खूब पढ़े, लेकिन 10 घंटे तक आपने बहुत पढ़ा, वो रिटेंशन पावर फिर कैसे अपनी मजबूत करते हैं? क्योंकि पिछला पढ़ा तो दिमाग से जाने लगता है बाहर, नहीं?
2: हाँ जी, इसमें यूपीएससी का जो मेन वो है, इसलिए मल्टीपल रिवीजन इज अ मेन पार्ट, इसको बोलते हैं.
1: जी जी जी. अच्छा.
2: आप 4-5 चीज एक बार मतलब उसको पढ़ते हो. मैं तो 5 साल से वो पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को तो काफी एकदम आपको, बट बाद में तो एकदम याद ही हो जाता है.
1: हाँ, बहुत अच्छी बात. मल्टीपल रिविजन्स इज द की.
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
1: जी, जी बिल्कुल. बार बार दोहराना ही सफलता की कुंजी है. बिल्कुल. एक प्रश्न के साथ अंजलि आपके सामने.
0: तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी?
2: तैयारी के दौरान सबसे बड़ा मुझे लगा क्या, आप कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आपकी हो जाती है. कई बार आपको डाइवर्जन हो जाता है, या फिर आजकल सोशल मीडिया से भी काफी होता है. आप दूसरे को देख रहे हो, आपके कॉलेज के जो दोस्त थे वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो जॉब कर रहे हैं, और आप अभी भी पढ़ रहे हो.
1: जी.
2: तो आपको फोमो होता है आजकल सोशल मीडिया क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट. दूसरे वो कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो करना चाहिए फिर, बट आप धीरे धीरे देखते हो आपका एक पीयर ग्रुप बन जाता है जो यूपीएससी कर रहा है.
1: बिल्कुल.
2: वो आपको मोटिवेट करता रहता है. साथ में आप देखो कि आप पॉजिटिव रिजल्ट लाओ धीरे धीरे. तो आपको थोड़ा एक बार प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर आपको वो करता है और आगे, मतलब पॉजिटिव प्रोग्रेशन हो रहा है. तो आपको मोटिवेट करता है आगे जाने के लिए.
1: सीढ़ी दर सीढ़ी आप सफलता की ओर जाते हैं.
2: हाँ जी, हाँ जी.
1: बहुत अच्छी बात है. और अंजलि के मन में एक और सवाल भी है.
0: ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्या चुने थे?
1: बताइए अंजलि, आपसे पूछना चाहती
2: हूँ. जी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था ज्योग्राफी लिया था मैंने.
1: अच्छा.
2: वो मेरा उसमें इंटरेस्ट था क्या, उसमें काफी सारे मतलब पूरे वर्ल्ड के बारे में जाना जाता है.
1: अच्छा, ज्योग्राफी था. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, एक ही होता है?
2: जी, उसके 2 पेपर होते हैं. ऑप्शनल आपको अलग से लेना पड़ता है.
1: अच्छा.
2: वो सबको लेना पड़ता है, बट आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और आप उसके अलावा कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं.
1: अच्छा. अच्छा प्रद्युमन, कई बार ऐसा लगता है जब हम कोई तैयारी कर रहे होते हैं, मनोबल हमारा टूटता है, ऐसा लगता है आप तो ये छोड़ देना चाहिए. तब आपने क्या ऐसा अवसर कोई आपके सामने आया? अगर आया तो आपने आपको अपने मोटिवेट कैसे किया?
2: जी, ऐसा मेरे साथ 23 में हो गया था. 23 में जब मैंने इंटरव्यू दिया और फाइनलिस्ट में नाम नहीं आ पाया जो कि काफी एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे हो गया था कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अब तो आगे नहीं हो पाएगा, फिर से तैयारी नहीं हो पाएगी, फिर से 1 साल, फिर से प्रीलिम्स दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, फिर से पहुंचने के बाद. तो उस टाइम पे मैंने दोस्तों ने काफी हेल्प करी थी.
1: अच्छा.
2: तो उन्होंने काफी सपोर्ट करा क्या, अभी तो अभी है, एक से कुछ नहीं होता, अभी और भी दे सकते हैं, अभी और एनर्जी है. साथ में फैमिली का भी काफी सपोर्ट रहा.
1: अच्छा, फैमिली कैसे आपके सपोर्ट में आई इस समय में, ये बताइए. मतलब फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है प्रद्युमन, है ना? फिर उसके बाद दोस्त आते हैं, फिर तो बाकी सब लोग आ जाते हैं. तो फैमिली कैसे आपके लिए सपोर्टिव रही, जब आपने थोड़ा सा निराशा शो की होगी फैमिली में, तो कैसे घर वालों ने इसको लिया और आपको फिर से प्रेरणा दी?
2: जी, घर वालों में से मम्मी पापा और बहन ने, उन्होंने देखा क्या अभी, उन्होंने क्या क्या थोड़ा सा कम हुआ है, बट उन्होंने जो लॉस हुआ उसको पॉजिटिव साइड से देखा।
1: हाँ।
2: क्या मतलब एक ग्लास हाफ फुल वाली जो मेंटेलिटी होती है।
1: हाँ।
2: क्या अभी ये तो हुआ है बट ये देखो पॉजिटिव भी तो हुआ है, पहले मेंस नहीं हुआ तब की बार इंटरव्यू हुआ है, तो एक प्रोग्रेशन ही है, क्या पता नेक्स्ट टाइम अच्छा लिस्ट में नाम आ जाए। तो आगे बढ़ते रहना चाहिए और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़े से, यू आर जस्ट, आप बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच के आप थोड़ा सा और मोटिवेशन दिखाओ, तो फैमिली का काफी सपोर्ट रहा उसमें, जो कि सिर्फ मानसिक भी और मतलब हर जगह से मॉनिटरी हर फील्ड।
1: हाँ, बिल्कुल, अगर फैमिली हमारे पीछे खड़ी होती है तो हम बहुत सारी समस्याओं का सामना अपनी जिंदगी में आराम से कर लेते हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए एक गीत हम सुनवा रहे हैं, तो ये गीत सुनिए, उसके बाद युवा श्रोताओं, प्रद्युमन सेठ के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी।
2: हाँ जी।

0: अंजलि, हमने प्रद्युम्न के लिए ये प्रेरणादायक गीत सुनवाया और इनके लिए ये गीत गाया अलका याग्निक और कुमार सानू ने, लिखा देव कोहली ने और संगीत पद किया था जतिन ललित ने। फिल्म का नाम था राजू बन गया जेंटलमैन। तो जैसा कि युवा श्रोताओं, हमने आपसे वायदा किया था कि ब्रेक के बाद, ये जो गीत का ब्रेक था उसके बाद फिर से हमारा प्रद्युम्न सेठ के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तो अगले प्रश्न के साथ अंजलि,
1: आपके लिए अगला प्रश्न है, नोट्स बनाने की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी?
2: जी, नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी मैंने दो चीज़ों पर फोकस रखी। एक तो स्टैटिक पोर्शन, जो कि फाउंडेशन रहता है, जो एनसीईआरटी से पढ़ते हो और जो बाकी बुक से पढ़ते हो
0: जी।
2: साथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यूज, जो कि क्वेश्चन पहले आ रखे हैं,

0: जो कि काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का।
1: अच्छा, ये कहा जाता है प्रतिमान कि जो पिछले साल आ गया वो तो इस साल नहीं आएगा।
0: जी, बट ऐसे आप ऐसे 10 साल के देखो तो थोड़ा बहुत आपको पैटर्न मिल जाता है
1: और समझ में आता है।
0: हाँ जी, हाँ जी, और पता चल जाता है कि यूपीएससी क्या चाहता है, कहाँ से पूछ रहा है, तो उसको आपको काफी हेल्प होती है
1: जी।
0: और साथ साथ ही करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वो भी काफी हेल्प होते हैं।
1: अच्छा, जो स्टैटिक है जिनमें कोई चेंज नहीं होता एक पोर्शन, तो वो होता है आपका।
0: हाँ जी,
1: और एक करंट अफेयर्स का जो नित नई गतिविधियां होती रहती हैं।
0: हाँ,
1: तो उसके लिए फिर आप क्या करते थे करंट अफेयर्स के लिए? न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे या टीवी देखना या किसी और माध्यम से आप जानकारियां प्राप्त करते थे?
0: जी, शुरू मैं तो पहले वो देखता था, पहले मैंने अपना न्यूज़पेपर रखे, दो, हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। साथ साथ ही मैंने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम आया था आजादी का अमृत महोत्सव पे, तो वो भी काफी हेल्प हुआ था मेरे को।
1: अच्छा।
0: हिस्ट्री में तो ऑल इंडिया रेडियो का भी काफी हेल्प रहा। साथ साथ ही मेरे को करंट अफेयर की मैगजीन्स होती है जो कि ऑनलाइन आती है, वो भी काफी हेल्प रहती है।
1: अच्छा, तो ऑनलाइन ही उनकी पढ़ाई करते थे या प्रिंट आउट निकलवा के आराम से पढ़ते थे?
0: जी, मेरे को थोड़ा पेपर निकलवा के पढ़ने का ज्यादा, तो मैं खुद ही पेपर पढ़ता था, ऐसे फिजिकल कॉपी, तो वो ज्यादा अच्छा रहता।
1: तो जो हमारे युवा लिसनर्स अंजलि इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो उनके लिए टिप्स आ रही हैं प्रद्युम्न की तरफ से कि आपको किस तरह से अपने करंट अफेयर्स की जानकारी रखनी है, किस तरह से आपको अपनी रूपरेखा बनानी है। कोई और प्रश्न है आपके दिमाग में?
2: जी, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है?
1: वो तो आपने शुरू में बताया, दोस्त थे आपके, पेरेंट्स थे, इसके अलावा अपने स्तर पर अगर हम आपसे पूछना चाहें तो आपका, आपकी सफलता आपको अपने किस गुण के कारण मिली?
0: जी, इसमें अपने ऊपर विश्वास और अपने अपनी जो शक्तियां हैं, मतलब अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर विश्वास, वो काफी जरूरी है। आपको सेल्फ बिलीफ, जो कि आपको सेल्फ मोटिवेशन होता है, आप जिससे, आप चाहे आसपास कुछ भी चल रहा हो, चाहे थोड़ा बहुत लॉस हो रहा हो, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, बट आत्मविश्वास है तो चाहे कितनी भी कठिनाई आए आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे और आप आगे प्रोग्रेसिव जाओगे
1: कि मैं कर सकता हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: बिल्कुल। अच्छा, ये और जानकारी आपसे चाहेंगे, इस किस स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन किया, क्या पढ़ाई की है आपने यहाँ तक आने से पहले?
0: हाँ जी, हाँ जी, मैंने 12th में नॉन मेडिकल से करा था।
1: अच्छा,
0: फिर मैं 2017 में मैंने IIT रुड़की में एडमिट लिया था, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, फिर मैंने 21 में ग्रेजुएशन हुआ था एंड 21 से ही मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी में दिया था।
1: वो तो आपने बताया। अच्छा, स्कूलिंग आपकी कहाँ की है प्रद्युम्न?
0: जी, स्कूलिंग मेरी नर्सरी से मॉडल स्कूल रोहतक से।
1: अच्छा, मॉडल रेडियो स्टेशन के बगल में है जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं
2: जी,
1: तो मॉडल स्कूल से आपकी स्कूलिंग हुई है। अच्छा, तो आप ITN रहे हैं, तो इधर ब्यूरोक्रेसी में आपने कदम कैसे डाला, मतलब इधर आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो आप इधर भी रह करके आगे तक जा सकते थे, तो एक ITN ब्यूरोक्रेट में तब्दील होने के लिए क्या, कैसे सोचा आपने?
0: जी, मैंने जब मैं देखा तो मेरा था क्या, IIT में जाके मैंने सब कुछ एक्सप्लोर करा, तो मुझे पता चला क्या, आप कोडिंग में जाते हो, आप एक थोड़ा सा लोगों से टच दूर हो जाता है। आप आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, कंप्यूटर कोडिंग का जमाना है, तो आप जो लोग ग्रास रूट पे या जो निचली लेवल पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आपको इतना पता नहीं होता, बट जो ब्यूरोक्रेसी है जो टेक्नोलॉजी को भी और बाकी लोगों की प्रॉब्लम्स को, दोनों को मिक्स करती है
1: जी।
0: तो ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट भी होते हैं और वो लोगों की सोशल प्रॉब्लम भी जानते हैं, तो मेरे को वो बनना था।
1: टेक्नोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट आप दोनों ही बनना चाहते थे और आप दोनों ही बन गए प्रद्युम्न, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
2: प्रद्युम्न, जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: जी, पहली सलाह तो मैं देना चाहता हूँ कि अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, आपके पॉजिटिव को फोकस करिए और आगे बढ़ते जाइए
1: जी।
0: साथ साथ ही आप जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनकी तरफ देखिए, उसमें प्रॉब्लम क्यों फेस हो रही है और उनको सोल्व करने का ट्राई करिए, और खुद से नहीं होती तो अपने दोस्तों का हेल्प लीजिए, अपने पीयर ग्रुप का, अपने पेरेंट्स का, तो हेल्प लेने से आपको फायदा ही होता है, नुकसान ही होता। थर्डली, आप ऐसा अपने सोचिए कि आपका लॉन्गर टर्म, आपका विजन क्या है, आप देश की प्रगति में कैसे आप हेल्प करना चाहते हैं, तो उसको अपने दिमाग में रखिए हमेशा।
1: बहुत अच्छी टिप्स आपने दी हैं थोड़े से शब्दों में।
2: अब पढ़ाई और मानसिक तनाव के बीच बैलेंस कैसे बनाएं?
1: ये अंजलि ने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये तो होता है कि एक तनाव आपके ऊपर हावी रहता है और तैयारी भी आपको करनी होती है, तो कैसे आपने ब्रिज किया इन दोनों चीजों को?
0: जी, मैं अपनी तैयारी

0: माइंडसेट रहना बहुत जरूरी है, वही आपको मेंटल स्ट्रेस और आपको एकदम इमोशनल इंटेलिजेंट रखता है।
1: बिल्कुल, कहीं पे अगर डगमगाते हैं तो आजकल तो तकनीक इतनी हमारे आसपास है, तो हम तरह तरह के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। और आपने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यूज़ भी आपने देखे और आपको काफ़ी उनसे प्रेरणा मिली, बहुत अच्छी बात है।
2: प्रद्युमन, इंटरव्यू राउंड का आपका अनुभव कैसा रहा?
1: हाँ, ये प्रश्न शुरू से ही हमारे दिमाग में था, देखिए अंजलि के भी दिमाग में आया। जो आपका इंटरव्यू हुआ था यूपीएससी में, कैसा है, आप कैसा अनुभव रहा, आप शुरू से बता दें, अभी हमारे पास 7 मिनट हैं, कि कैसे आप तैयार हुए, घर से चले, कैसे पहुंचे, ड्रेस का सिलेक्शन कैसे किया, सब जानना चाहेंगे हम आपसे।
0: हाँ जी, हाँ जी जी, जैसे कि ये 2025 वाला मेरा थर्ड इंटरव्यू था,
1: अच्छा,
0: तो थोड़ा मतलब मेरे को थोड़ा वो था, बट ऐसा भी था कि 2 बार से इंटरव्यू में ही कम नंबर आ रहे थे, तो मेरे को थोड़ा प्रेशर भी था कि इस बार इंटरव्यू कोई पॉजिटिव बढ़िया स्कोर लाना है। बट तो फिर मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही फोकस करने के लिए ट्राई करा, जो कि इंटरव्यू में, रियल इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प हुआ
1: जी
0: जी। मैंने उसमें अपना धीरे बोलना, जो कि और लाइक OLQ होता है, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जो कि UPSC पैनल मेंबर्स भी देखते हैं, तो
1: अच्छा
0: उन पे ज़्यादा फोकस करा। साथ साथ ही UPSC से मतलब मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, चेयरमैन सर ने तो मेरे से पहले क्वेश्चन यही पूछा था, क्या आप 21 के ग्रेजुएशन हैं, तो आप अभी इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप साथ साथ कुछ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? तो मुझे लगता है वो उसका जो मैंने आंसर दिया था उससे एकदम काफ़ी इम्पेक्ट हुआ था
1: जी
0: जी। तो मैंने हुआ था क्या, मैंने उनको बताया था क्या, मैं 2024 में असिस्टेंट कमांडेंट CA सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सिलेक्ट हो गया था,
1: जी
0: तो उससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पेक्ट रहा। और जैसे कि पहले इंटरव्यूज़ में रहता है क्या, 5 मिनट में आपको, लेकिन वो पता चल जाता है उनको क्या ये बंदा इट्स लाइक गुड ऑफिसर है या नहीं है, तो इस बार फर्स्ट 5 मिनट्स में मेरा बहुत ही पॉजिटिव रहा था, जिससे फाइनली स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, 194 स्कोर हुआ, वो वन ऑफ द हाईएस्ट राइज फॉर इंटरव्यूज में।
1: हाँ, आपने उस कहावत को सिद्ध किया कि वेल बिगन इज हाफ डन।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
1: अच्छे
0: जी,
1: से अगर हम शुरुआत करते हैं तो सफलता समझो मिली ही मिली। अच्छा, इसमें ड्रेस का भी कोई रोल होता है, आपके बैठने का पोस्चर, हम सुनते हैं लोगों से, तो क्या ये सब चीजें काउंट करती हैं प्रतिमन?
0: जी। फर्स्ट तो आपकी पर्सनैलिटी, वो तो सबसे ऊपर है
1: जी
0: जी। उसके साथ आप हाउ यू कैरी योर सेल्फ, आप
1: यस
0: कैसे अपने आप को कैरी करते हो, आपका ड्रेसिंग, आपका ऑफिसर ऐसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन कर रहे हो, आप बोलने से पहले 1-2 सेकंड सोचते हो, आपका ये सब काफ़ी मैटर करता है। बट वहाँ पे जाके पता चलता है कि आप टाई थोड़ी आपकी टेढ़ी हो गया, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, आपका थोड़ा सा आप स्माइल कर रहे हो वो सब मैटर करता है।
1: हाँ जी, आपका आत्मविश्वास कितना है, कितने कॉन्फिडेंटली आप वहाँ बैठे हैं, और आई कांटेक्ट का तो देखिए हर जगह पे बहुत बड़ा रोल है। आई कांटेक्ट आपको आधी सफलता दिला देता है, हम अच्छे से बात कर पाते हैं। आंखें नीची करके कोई बोल रहा है तो समझो जितना भी ज्ञान है वो सब पानी में जा रहा है ना।
0: हाँ जी, हाँ
1: चलिए,
0: जी, हाँ
1: और
0: जी।
1: कोई प्रश्न है अंजलि आपका?
2: अगर पहली बार में सफलता नहीं मिलती तो आपकी अगली योजना क्या होती?
1: देखिए, पहले भी हमें बताया प्रद्युमन ने कि उन्होंने 3-4 अटेम्प्ट्स किए इसके लिए, लेकिन एक कल्पना के तौर पे ये पूछ सकते हैं कि ये वाला सवाल भी जा सकता है
0: हाँ
1: आपके
0: जी, हाँ
1: लिए,
0: जी, हाँ जी
1: तो बताइए।
0: जी, मेरा मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ उसी की। मेरे को ऐसा कब होने लगा था, जब 23 का फाइनल इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो मुझे लगा था कि अब बैकअप होना चाहिए, अब ये तो नहीं हो पाएगा, तो मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में कोडिंग में नहीं जाना चाहता था, मैं गवर्नमेंट तरफ ही जाना चाहता था, सिविल सर्विस की तरफ। तो
1: अच्छा
0: उस टाइम पे मैंने अपना सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की तरफ गया था, तो
1: जी
0: वो मेरा एक तरह से था पड़ाव था, क्या मेरे को एक तरह से देश की सुरक्षा के लिए, साथ साथ ही पीपल के साथ एक कनेक्शन के साथ, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स करती है, वो सिर्फ बचाते नहीं है हमारी बॉर्डर्स को, बॉर्डर पे रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी करती है और उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स को भी सुनती है, तो
1: जी
0: वो मेरा पड़ाव रहा था अदर देन सिविल
1: हाँ जी।
0: सर्विसेज।
1: अच्छा, ये IAS आपने क्रैक किया है, हम कह रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है। आपने ये UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया है, अब किस दिशा में आपका बढ़ना होगा, कि आप डायरेक्ट IAS उसमें जाएंगे, IAS IPS में जाएंगे या IRS में जाएंगे, ये आखिरी सवाल है आपसे हमारा।
0: जी, इसमें क्या होता है, अभी आपका एक एलोकेशन आएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा आपकी सर्विसेज क्या है, फिर उसमें अगस्त में सबको साथ साथ में लबासना बुलाएंगे अभी, तो वो हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है।
1: फॉर ऑल,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: कॉमन फॉर ऑल।
0: ग्रुप ए सर्विस।

0: पिसिस को सबको बुलाते हैं वहाँ।
1: अच्छा जी।
0: तो वहाँ पे आपका 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होगा लबासना में, वहाँ पे मल्टीपल अटैचमेंट्स होती हैं, आप वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री भी आते हैं, उनसे भी मिलते हो।
1: अच्छा।
0: फिर उसके बाद 3 महीने के बाद आपको अपनी अकेडमी ज्वाइन करना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: वो 13 महीने का कोर्स होता है।
1: और वो भी कॉमन फॉर ऑल है
0: जी, वो सबकी अलग अलग अकेडमी होती है।
1: अच्छा।
0: आईएएस की मसूरी में होती है, आईपीएस की हैदराबाद में होती है, नेशनल सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में।
1: अच्छा। ये कैसे पता चलेगा कि आपको किधर जाना है?
0: जी वो ऑलरेडी आपने लिस्ट बना चुकी है आपकी प्रेफरेंस क्या है, आईएएस आईपीएस आईआरएस। तो अब यूपीएससी बस उसको अभी आपको थोड़े 1 महीने के अंदर आपको एलोकेट कर देगी।
1: अच्छा, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, उस हिसाब से फिर आपके प्रशिक्षण जो कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: हाँ जी, जी, जी। तो प्रद्युमन, आपके साथ ये बातचीत बहुत अच्छी रही, और जिन हमारे युवा श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को आज सुना है उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। अगर इस फील्ड में कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसके लिए आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं प्रद्युमन, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सुनने वाले इसका लाभ उठाएं। और बहुत स्माइलिंग फेस के साथ प्रद्युमन ने सभी बातों की जानकारी दी है। आप ज़िंदगी में निरंतर तरक्की करें और देश सेवा का जो प्रण आपने लिया है वो आपका पूरा हो। हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से, युवा संसार कार्यक्रम की ओर से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रद्युमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ आकाशवाणी का और आप सभी का, को अच्छे से क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछने के लिए, सभी का जिसे सभी को हेल्प हो जाए। थैंक यू,
1: फिर से बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युमन। और इसी के साथ समेटते हैं आज का युवा संसार कार्यक्रम यहीं पर। सभी को नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा संसार कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, शाम के 6 बजने को है। अब हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करें।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 6:05 हो चुके हैं, अब आपको दे दें कार्यक्रम रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा में पहले जान लीजिए आज के शेष कार्यक्रम कंट्री वाइड। यह कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर, 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम सुना जा सकता है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश कुमार से बातचीत का विषय रहेगा कपास फसल की कीड़ों से रक्षा। 7:00 ग्रामीण संसार में बातचीत आप सुनेंगे मलेरिया रोग कारण व उपचार। 6:30 पर आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले होगी। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:25 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:30। एक फिल्म से कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनचाहे गीत लेकर आएंगे रात्रि 10:00। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। शेष कार्यक्रम आपने जाने और अब आपको बता दें कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। नाटक आप सुन पाएंगे कल रात्रि 9:30। गांधी चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर सुनिएगा सादगी विषय पर गांधी जी के विचार। सुबह सवेरे यह कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 7:25 पर। NCERT प्रायोजित कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 12:30 पर। युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 विशेष रहेगा युवा पसंद फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम। 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में फोन इन के तहत कल पशुपालन संबंधी समस्या व समाधान विषय पर कार्यक्रम होगा। खेत खलिहान कार्यक्रम दोपहर 2:30 पर जिसमें चर्चा रहेगी मिट्टी व पानी की जांच। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात्रि 8:25 पर।

फिल्म संगीत कार्यक्रम एक रंग आप सुन सकते हैं प्रातः 9 बजे, फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:30 बजे। आपके अनुरोध पर फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित यह कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 2 सभा में 1:10 पर। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात्रि 10 बजे। एक फिल्म से कार्यक्रम होगा कल रात्रि 9:15 पर।

कल प्रातः 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे भीम सिंह डेघलिया। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा।

0: सुन रही थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 6:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे, जिन्हें रिले करेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया और विभिन्न जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक सिटी बसें रवाना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 नए इलेक्ट्रिक बस अड्डे बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का अध्यक्ष नियुक्त किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कटाई के बाद प्रबंधन, पौध कीट नियंत्रण और रोगों के नए विषयों पर मास्टर डिग्री और PhD शुरू करने की घोषणा की। और आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद का त्यौहार पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
2: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया तथा विभिन्न जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत की ऐतिहासिक और पावन धरती से आज हरियाणा में स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था के नए युग की शुरुआत हुई है।
4: साथियों, आज हम हरियाणा में ग्रीन पब्लिक

0: ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार कर रहे। पानीपत की इस ऐतिहासिक धरा से आज 5 जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक बसें को रवाना करते हुए मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हुआ। पानीपत के लिए यहां पर 40 बसें, यमुनानगर के लिए 15 बसें, कुरुक्षेत्र सोनीपत के लिए 10-10 बसें और पंचकुला के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसें को रवाना किया गया है। यह हरियाणा के स्वच्छ, सुगम और आधुनिक परिवहन के भविष्य की शुरुआत है। पानीपत में 7 करोड़ रुपए की लागत से बने इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण और ग्रीन एनर्जी की दिशा में ही आगे बढ़ रही।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सेवा से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण में कमी आएगी तथा लोगों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 8 अन्य जिलों में भी इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माणाधीन है, जहां बसों की चार्जिंग की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही 1 वर्ष के भीतर 10 नए इलेक्ट्रिक बस अड्डे बनाए जाएंगे तथा भविष्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार बसों को रेलवे की तर्ज पर ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ने पर भी कार्य कर रही है, जिससे यात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से बसों की लोकेशन और आगमन समय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और पंजाब के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता और पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा,
2: सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, पूरे के पूरे संगठन का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता में इतना विश्वास जताया कि वो एक प्रदेश अध्यक्ष जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमारा संगठन पहले ही काफी मजबूत है, संगठन उसी मजबूती के साथ काम करता रहे। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और ज्यादा मजबूत बने और महिलाओं की राजनीतिक में भागीदारी और बढ़े, मेरी प्राथमिकताओं में है।
1: डॉक्टर अर्चना गुप्ता पीजीआई रोहतक से एमडी की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। वो पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हैं और भाजपा में लंबे समय से सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। वर्ष 2010 से 2016 तक उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में जिला सह संयोजिका, संयोजिका और हरियाणा के उपाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने महिला मोर्चा में संगठनात्मक काम किया और पानीपत क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने में भूमिका निभाई। वर्ष 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सक्रिय प्रचार किया, खास तौर पर महिला मतदाताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के विचारधारा प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचेगी।
0: डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है महिला सशक्तिकरण, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से आज आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हरियाणा की बेटियों, हरियाणा की माताओं और संघर्ष करने वाली हर महिला का आज सम्मान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के रूप में किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण में निरंतर काम कर रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल की केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में उद्यानिकी फसलों हेतु गुणवत्ता

0: गुणवत्तापूर्ण बीज एवं रोपण सामग्री का रणनीतिक प्रतिमान विषय पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन लेफ्टिनेंट अमित सिंह स्मृति न्यास के सहयोग से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल सम्मेलन नहीं बल्कि विकसित भारत के कृषि विजन का संगम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप बागवानी कम समय में किसानों के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया है। उन्होंने बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कटाई के बाद के प्रबंधन, पौध कीट नियंत्रण और रोगों के नए विषयों पर भी मास्टर डिग्री और PhD शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने विश्वविद्यालय को 14 विज्ञान केंद्र प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र किसानों तक गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री और वैज्ञानिक सलाह पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित कृषि के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज और रोग मुक्त पौध सामग्री से कृषि उत्पादन में 15 से 25% तक और बागवानी फसलों में उत्पादन बीज गुणवत्ता से 30 से 40% तक बढ़ाया जा सकता है।
1: यदि भारत आने वाले दशकों में एक वैश्विक कृषि महाशक्ति के रूप में स्थापित होना है तो उसकी नींव कहां रखी जाएगी? कृषि का भविष्य छिपा है उसके बीज में और उस पौध में। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि गुणवत्ता युक्त बीज और पौधे से कृषि उत्पादकता में 15 से 25% तक वृद्धि संभव है, जबकि रोग मुक्त प्रणाली और सामग्री बागवानी फसलों में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों को 30 से 40% तक ये बढ़ा रही। यही कारण है कि विकसित देश अपनी कृषि नीति में सीड सिक्योरिटी एंड प्लांटिंग मटेरियल क्वालिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम कर रहे हैं।
0: आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर न्यूज ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 6:20 और 22 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने बलजीत भाई की राम राम भाई। आज देखो बृहस्पतिवार है और आपने बातचीत भी सुनाओगे, मनोरंजन भी करवाओगे, लेकिन ऐसा है कि भाई देखो मौसम में जो गर्मी चल रही थी थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। बादल वायु हो रही है, बारिश का ऐसा परिवर्तनशील सा मौसम, और बताया भी गया था कि भाई अगले जो 3-4 दिन में मौसम कुछ ठंडा सा होने वाला है, तो उसका है बूंदाबांदी हो जाए, मौसम बढ़िया रहेगा, लोगों ने गर्मी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन फिर भी एहतियात बरतन की जरूरत है। जो भी हम खेत कार में काम कर रहे हैं उड़े भी, अपने पशुधन का भी और अपने जो छोटे बच्चे हैं उनका भी, क्योंकि एकदम से जब मौसम परिवर्तन हुआ है तो थोड़ा शरीर के ऊपर असर पड़ा करे, तो इसमें थोड़ा ज़रूर ध्यान रखें। और साथ में जो अपना खेतीबाड़ी के काम धंधे हैं उनका भी, क्योंकि कपास में जो है भाई पानीपात का, निराई गुड़ाई का, गन्ने की फसल की बात करें उसमें भी, और भाई अपनी जो फसलें हैं जो हमने गेहूं की फसल कुछ राख भी रखी थी कि भाई बिक्री के लिए, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें कि भाई नमी नामी उसमें ना हो जाए, क्योंकि मौसम परिवर्तनशील है। तो जब भी अच्छी थोड़ी धूप सी निकला हुआ है, घाम घूम उसने दिखा के, धूप दिखा के, और फिर उसने मंडी में ले जाएं। जो भी अपनी साग सब्जी फसलें हैं उन्हें भी कच्ची अवस्था में तोड़ के बाजार में ले जाएं, तो इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। खासतौर पर जो अपनी कपास की फसल है उसमें तो ध्यान रखना है, क्योंकि यू मौसम ऐसे ही, और इसमें कुछ जब थोड़ा बहुत कीड़े या कोई बीमारी आन का अंदेशा बन जाए आग्रह है, क्योंकि मौसम ऐसा था तो उसकी वजह से भी और यूं भी थोड़ा ध्यान हमने ज़रूर रखना पड़ेगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान करते हुए और भाई पहले भाइयों का मनोरंजन करवा दें। आज भाइयों को एक रागनी सुनवा दें, गायक कलाकार होंगे जोगिंदर सिंह मलिक और उनके साथी।

सोया करे जो बुरा हराम करे ले करनी होते मुँह पे बदनामी कर ले घर त्याग दिया थारी कौन गुलामी कर ले लिए मैं तो माया।

दर्शनी भाईया ने रागनी गायक कलाकार थे जोगिंदर मलिक और उनके साथी। और भी साहब पहले जिक्र कर रहे थे कि भाई आज बृहस्पति है तो साप्ताहिक समाचार समीक्षा जा आग्रह है, जिसके कारण पहले थोड़ा भैया मनोरंजन करा दे हैं, फिर साप्ताहिक समाचार समीक्षा और उसके बाद फिर जो है बातचीत कार्यक्रम अपना वो ही रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा ये कहेंगे कि भाई जो भी अपने खेती बाड़ी के काम हैं थोड़ा हा रोकने, क्योंकि मौसम परिवर्तनशील हो गया है, क्योंकि कई दिनों लिए थे अच्छा गांव पड़ा था और दो जे टिप के बताए जा रहे हैं, तो इस वजह से भी क्योंकि देखो मौसम भी ऐसा है तो उस हिसाब ने देखते हुए ये भी थोड़ा हा मौसम परिवर्तनशील हुआ था, इसमें कुछ राहत मिलेगी। लेकिन जो अपना खेती बाड़ी के या सिंचाई का जो काम है, कपास की फसल की बात करें उसमें सिंचाई क्योंकि हालांकि देर से करी जा आकर तो उसने थोड़ा हा इबर रोक लें, और उसके बाद फिर जो अपना देखो निराई गुड़ाई का तो हमने ध्यान रखना है क्योंकि खरपतवार ना हो पाए अपनी फसल में, तो इन चीज़ों में अच्छी तरीके देख कर क्योंकि अपने खेत का भी और मौसम का भी पूरा तरीके तो अपना जायजा लेकर इतना अपने खेत की तैयारी है या अपनी किस्म का चुनाव करना है या फिर धान फसल की तैयारी है अपने नर्सरी में बिजाई की है, इस तरह के बहुत से काम है। आगे तिल की बिजाई हो जाएगी, भाई चारा फसल में लोबिया की बिजाई है, तो काम तो बहुत से हैं और सारे के सारे इस अगले महीने शुरू हो जाएंगे और इस महीने से भी शुरुआत हो रही है, तो इनकी इतने किस्म का और खेत की तैयारी का यू अपना सही तरीके से ध्यान रखें और भाई ये थोड़ा हा इंतज़ार करेंगे साप्ताहिक समाचार समीक्षा का।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है मिशन लाइफ पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है मिशन लाइफ के तहत हरियाणा के विभिन्न जिलों में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न अधिकारियों से बातचीत और रेड क्रॉस व समाज सेवी संगठनों द्वारा दिया जा रहा योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मिशन लाइफ के तहत जल और पर्यावरण संरक्षण पर लगातार बल दिया है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट श्री मोदी द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य जीवन को इस तरह से जीना है जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो और प्राकृतिक स्रोतों का ह्रास न हो। हरियाणा में मिशन लाइफ के तहत हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए हमने विभिन्न जिलों के अधिकारियों से बातचीत की। कैथल की उपायुक्त अपराजिता ने बताया,
1: मिशन लाइफ के तहत पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देश और प्रदेश स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त अभियान, ऊर्जा संरक्षण, सौर ऊर्जा के उपयोग तथा बड़े स्तर पे पौधारोपण जैसे अभियानों ने लोगों में जागरूकता बढ़ाई है।
0: सुश्री अपराजिता ने बताया कि इस दिशा में कई सार्थक प्रयास किए गए हैं।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की अगुवाई में प्रदेश सरकार भी इस दिशा में कई सार्थक प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन भी सरकार के आदेशानुसार मिशन लाइफ के उद्देश्यों को धरातल पर लागू करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और विभिन्न विभागों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कैथल में वन विभाग द्वारा गत वर्ष लगभग 2 लाख पौधे रोपित किए गए। सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत योजनाएं चलाई जा रही हैं। मिशन लाइफ के तहत एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक पर रोक लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित करने की भी पहल की गई है।
0: कैथल की उपायुक्त ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप उपलब्ध करवाकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयासरत हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्रोत्साहन देकर प्रदूषण कम करने की योजना बनाई जा रही है। अमृत सरोवर योजना के तहत जल स्रोतों के संरक्षण और नए तालाब विकसित करने की योजना चलाई गई। गोवर्धन योजना के अंतर्गत जैविक कचरे और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद तैयार करने की पहल सहित पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है।
0: हमने कैथल जिला परिषद के अध्यक्ष करमवीर कौर के साथ मिशन लाइफ पर विशेष बातचीत की। करमवीर कौर ने कहा कि ये मिशन लाइफ आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा विषय है।
2: मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा मिशन है जो हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण को बड़े बड़े भाषणों या सरकारी नीतियों से नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलावों से बचाया जा सकता है। जब हम बिजली बचाते हैं, पानी की बर्बादी रोकते हैं और प्लास्टिक को न कहते हैं तो हम प्रो प्लैनेट पीपल बनते हैं। मैं हरियाणा की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के अथक प्रयास और मेहनत से इस मिशन में लक्ष्यों को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सच करके दिखाया है। हर घर जल की बात करें तो हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिनमें अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों तक नल से साफ जल पहुंचाने का रिकॉर्ड बनाया है। जल संरक्षण के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वच्छ ऊर्जा नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में हरियाणा ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। कैथल में 1,000-2,000 केस दायर होते थे, वो मात्र 50-100 तक सीमित रह गए हैं।
0: श्री करमवीर कौर ने कहा कि कैथल में जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
2: कैथल की बात करूं तो जिला परिषद द्वारा इस लाइफ मिशन से जुड़ते हुए स्वच्छ भारत मिशन के साथ लगभग 124 पौंड को 3 पौंड सिस्टम या 5 पौंड सिस्टम में डाला गया है और लगभग 79 अमृत सरोवर तैयार किए गए हैं जिसके चारों ओर पगडंडी बनाकर सैर करने के लिए और साफ तालाब तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही 17 प्लांट ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लगाए गए हैं और लगभग 192 गांवों में कचरा सेट की व्यवस्था की गई है और 17 गांवों में काम चला हुआ है। कैथल डिस्ट्रिक्ट लगभग 87 गांवों के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है जिसमें डांड ब्लॉक सबसे आगे है और कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मशीन भी लगाई गई है जो डांड के अंदर लगाई गई है और 6 और अन्य अप्रूवल है। मैं गोबर गैस प्लांट की बात करूं तो जो सामुदायिक गोबर गैस प्लांट है मग्गो माजरी हमारे कैथल के गांव में लगाया गया है। लगभग 7 एसटीपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाए गए हैं, जिनमें पानी को साफ कर खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
0: जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रयास मिशन लाइफ के सफलता के लिए बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं।
2: हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमें बहुत कुछ ना करते हुए, अगर आप किसी कमरे में नहीं है वहाँ के स्विच ऑफ करना, वन टाइम प्लास्टिक को छोड़ देना, अब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप तांबे या साधारण बोतल में पानी कैरी करें, आप जब सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने कपड़े का थैला साथ में ले जाकर उसे यूज करें। इस प्रकार के रूटीन कार्यों से लाइफ मिशन के साथ जुड़कर हमें इसे आगे बढ़ाना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पिछली बार जिला परिषद ने अलग अलग साथियों को जिम्मेवारी देते हुए तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1,00,000 पेड़ लगाए, उसके साथ ही लगभग पोल्यूशन से बचने के लिए 100 ई रिक्शा अलग अलग गाँव में दी गई है, कुछ गाँव में ट्रैक्टर ट्रॉली दी गए हैं ताकि कचरा प्रबंधन में सहयोग मिल सके। तो हम सब साथियों की एक नैतिक जिम्मेवारी है कि लाइफ मिशन के साथ जुड़कर देश को और पूरे प्लैनेट को बचाना है।
0: पंचकुला में हमने नगर निगम के आयुक्त विनय कुमार से बातचीत की। उन्होंने बातचीत की शुरुआत नागरिकों से मिशन लाइफ की सफलता के लिए सरकार और प्रशासन को सहयोग देने की अपील से की।
3: मिशन लाइफ केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है। आज समय की मांग है कि हम अपनी दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाएं, जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पानी और बिजली की बचत करना, कचरे को खुले में न फेंकना, गीले और सूखे कचरे को अलग करना तथा अधिक से अधिक पौधारोपण करना।
0: उन्होंने बताया कि पंचकुला को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न पहल की गई है।
3: पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने के लिए नगर निगम लगातार विभिन्न पहल कर रहा है। शहर के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर कंपोस्ट, इनर्ट तथा आरडीएफ में बदला जा रहा है। बागवानी से निकलने वाले हरे कचरे को उपयोगी उत्पादों जैसे ब्रिकेट्स में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट को उठाकर उसका प्रोसेसिंग कर पेवर ब्लॉक्स जैसे उपयोगी उत्पाद बनाने की पहल की जा रही है।
0: श्री विनय कुमार ने कहा कि जल संरक्षण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है।
3: जल संरक्षण की दिशा में अपशिष्ट जल को ट्रीट कर टर्शियरी वाटर में परिवर्तित किया जा रहा है तथा उसका उपयोग पार्कों की सिंचाई एवं अन्य कार्यों में किया जा रहा है।
0: अम्बाला में हमने रेडक्रॉस के कार्यक्रम अधिकारी मनोज सैनी से बातचीत कर मिशन लाइफ में दिए जा रहे योगदान की जानकारी ली।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के तहत और उपायुक्त एवं प्रधान जिला रेडक्रॉस सोसाइटी अम्बाला श्री अजय सिंह तोमर जी के निर्देशन में हम रेडक्रॉस के युवाओं को पौधारोपण जल संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। इस मिशन के तहत हमने हमारे जो रेडक्रॉस की जितनी भी जमीन है उसके अंदर हमने अम्बाला कैंट में 400 पौधे लगाए हैं, अम्बाला शहर में 70 पौधे लगाए हैं ग्रीनरी के लिए, और इसके साथ साथ हम बच्चों को जल संरक्षण के लिए भी प्रेरित करते हैं। और इस मिशन के तहत जो भी युवा इस मिशन में हमारा साथ देता है हम उसको प्रोत्साहित भी करते हैं। इसके साथ साथ हम विद्यार्थियों के साथ स्वच्छता अभियान चलाते हैं और लोगों को पॉलिथीन मुक्त भारत अभियान के साथ जोड़ते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि जब भी बाजार में जाएं अपने साथ सामान खरीदने के लिए जूट का थैला साथ लेके जाएं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि उपायुक्त के निर्देशन में हमारा एक बर्तन बैंक है जिसके तहत हम कहीं भी भंडारा हो या कोई बड़ा उत्सव हो लोगों को निःशुल्क 500 बर्तन का एक सेट देते हैं जिसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते, सिर्फ एक आधार कार्ड लेते हैं। जैसे हम वो थाली देते हैं वैसे साफ सुथरी थाली हम वापस देते हैं। इससे जो हजारों की संख्या में थर्मोकोल थाली का जो प्रयोग होता है वो बचाव होता है और पर्यावरण को संरक्षण मिलता है।
0: अम्बाला में हमने एक समाज सेवी सोसाइटी प्रधान ऋतु शर्मा से मिशन लाइफ पर बातचीत की। सुश्री ऋतु शर्मा ने बताया कि सोसाइटी मिशन लाइफ की भावना के अनुरूप कई काम कर रही है।
5: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन लाइफ अभियान के उपलक्ष्य में समाज सेवा सोसाइटी द्वारा अम्बाला क्षेत्र में पिछले वर्षों से पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता से जुड़े विभिन्न कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। समाज सेवा सोसाइटी द्वारा वृक्षारोपण अभियान, प्लास्टिक मुक्त जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, पूजा सामग्री के उचित निस्तारण एवं जल संरक्षण जैसे कार्यों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य है मिशन लाइफ की भावना के अनुरूप जन भागीदारी बढ़ाना तथा स्वच्छता, हरियत एवं स्वस्थ अम्बाला के निर्माण में ही सहयोग देना है। पिछले 12 वर्षों में समाज सेवा सोसाइटी ने प्रशासन एवं नगर परिषद के सहयोग से अनेक जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों का सफल संचालन किया है जिससे नागरिकों में स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है।
0: इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई तो सुना भैया ने साप्ताहिक समाचार दर्शन और एक सुनोगे भैया ने एक बातचीत। हालांकि पूर्व प्रसारित बातचीत है, लेकिन भाई समय पे काम आने वाली है और इस मौके की है, तो सुनिए बातचीत।
4: भैया बात करते हैं कपास फसल की कीड़ों से रक्षा, इस बारे में हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक हैं आप और कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर से आपका आगमन हुआ है। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बस ये कि इस वक्त कपास की स्थिति क्या है, थोड़ा सा अगेती पछेती टाइम की, रेतीली और हर तरह की ज़मीन की बात करें तो।
5: संपूर्ण भाई इस टाइम पे वैसे कपास की बिजाई लगभग पूरी हो चुकी है,
4: मान के चल रहा है कि पूरी हो ली होगी
5: जी, क्योंकि देसी कपास की तो अप्रैल महीने में ही हम कहते हैं कि भाई 15 अप्रैल से जैसे हो जाती है, और बीटी की भी ज़्यादातर एरिया बीटी के अंडर आता है तो उसके भी बिजाई जो है 15 मई 20 मई तक पूरी हो चुकी
4: हो जाती है जी। अच्छा।
5: तो इसमें चाहे रेतीली ज़मीन है और है वो तो बिजाई की जहाँ तक सवाल है, बिजाई तो पूरी हो चुकी
4: अब तो थोड़ा थोड़ा बस बढ़वार पर है वो
5: जी।
4: हाँ, तो इसके बाद फिर कीड़ों की जहाँ तक बात आती है डॉक्टर साहब, कहते हैं इसमें तो शुरू तो लेकर आखिर तक कोई ना कोई कीड़ा जो है इसमें नुकसान करता रहे।
5: ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लंबी अवधि की फसल है ये। अब जैसे अप्रैल मई से ही ये स्टार्ट हो जाती है, इस समय और कोई फसल नहीं होती,
4: ठीक है,
5: और उसके बाद में ये अक्टूबर नवम्बर तक जैसे फसल चलती है, और इसमें इस लंबी अवधि के दौरान पत्तियाँ, क्योंकि गहरी पत्तियाँ होती हैं इसमें, हरियाली लिए हुए मुलायम पत्तियाँ हैं और कलियाँ फूल टिंडे एक ही समय जो है इसके फसल के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो इसी प्रकार से इसमें जितने ज़्यादा लंबी अवधि की है तो अनेक प्रकार के कीड़े
4: इसमें रस चूसने वाले भी हैं डॉक्टर साहब, पत्ते खाने वाले भी हैं, इसके अंदर सुंडियाँ फिर आगे चाल के तंग करेंगी, कितने कीड़े इसे जो नुकसान करते हैं।
5: हाँ। तो इसी की अगर बात करें हम, तो शुरुआत में इसमें रस चूसने वाले कीड़ों से ही जैसे इसकी शुरुआत होती है, या उससे भी पहले थोड़ा सा मैं जिक्र करूँ, जैसे इन्हीं दिनों में मई जून के महीने में उगती हुई फसल पर या जब बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं तो कटुआ सुंडी या सतही टिड्डे,
4: अच्छा,
5: वो इसके पत्तों को काट के या पौधों को काट के कई बार गिरे हुए मिलते हैं, पत्ते भी खा लेते हैं उगती हुई फसल पे, तो वो भी नुकसान पहुंचा देते हैं।
4: अच्छा।
5: उसके बाद में मौसम के अनुसार, क्योंकि पहले अभी जैसे बरसात का मौसम नहीं है तो गर्म हवाएं चलती हैं और नमी की कमी है हवा में, तो इस दौरान मई जून में चुरड़ा नाम का कीट इसको नुकसान पहुंचाता है,
4: चुरड़ा या जिसे खुरदरी कीड़ा
5: थ्रिप्स, हाँ थ्रिप कह देते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में चुरड़ा, ये पत्ते की निचली सतह से दिखाई नहीं देता लेकिन इसका जो आक्रमण है वो पत्तों की नीचे की तरफ से सतह को खुरचता है ये, और उसमें से जो रस निकलता है, जूस निकलता है, उसको पीता है, तो उसको पीने के कारण जब वो रस सूख जाता है तो पीछे से अगर पलट के देखते हैं तो चांदी जैसी चमक दिखाई देती है पत्तों की निचली सतह, और इसके आक्रमण की वजह से पत्तियां जो हों किनारों से मुड़ने लग जाती हैं और सूखने शुरू हो जाती हैं।
4: ये तो जो प्याज में भी आ जाए है चुरड़ा कीड़ा, ये वही है जो प्याज में
5: है चुरड़ा, हालांकि वो कीट अलग है वो, लेकिन है चुरड़ा ही, वो
4: है चुरड़ा ही, चुरड़ा भी उसने भी वही कह दिया।
5: हाँ हाँ, उसी प्रकार उनका जो आक्रमण का स्वभाव है वो एक जैसा ही है। और फिर इसके बाद में जैसे बारिश की शुरुआत हो जाती है जुलाई के महीने से हम मानते हैं, तो जुलाई अगस्त के दौरान नमी बढ़ जाती है और तापमान भी ज़्यादा होता है, तो उस दौरान हरा तेला जी, ये भी हरे रंग का थोड़ा सा पीलापन लिए हुए इसके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं, और जो इसके प्रौढ़ हैं वो पंख वाले होते हैं, बच्चे जो हैं इसके बिना पंख वाले होते हैं, पत्ते की निचली सतह पर रहते हैं और वहाँ से रस चूसते हैं। तो रस चूसने के कारण इसमें हरे पदार्थ की क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिससे पौधा भोजन नहीं बना पाता
3: जी, जी।
5: और वही है कि पत्तियाँ मुरझानी शुरू हो जाती हैं, किनारों से सूखनी शुरू हो जाती हैं, और साथ में ये जैसे मलमूत्र भी छोड़ते हैं रस अच्छा, चूसते हैं तो,
3: हा।
5: तो उसके ऊपर भी जो है ना चिपचिपाहट और फफूंद वगैरह भी देखने को मिल जाती है इसमें। तो ये हो गया हरातिल्ला का स्वभाव इसमें
3: जी।
5: फिर जैसे बारिश के बाद में थोड़ी सी तापमान में गिरावट आती है और वायु में नमी की मात्रा रहती है,
4: एक उमसी हो जाती है,
5: उमसी हो जाती है
4: बिल्कुल,
5: तो उस दौरान रस चूसने वाले कीड़ों में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता है।
4: सफ़ेद मक्खी तो डॉक्टर साहब ये तो एक बड़ी चेतावनी सी थी कपास के अंदर, खासतौर पर बीटी में है,
5: बीटी में
4: है ना, सफ़ेद मक्खी का बहुत प्रकोप होता है जी, मतलब
5: हाँ, क्योंकि बीटी आने से क्या हुआ था कि जो फल खाने वाले थे, पत्ते खाने वाले थे, जो सुंडियाँ थी उनका, उनकी तो रोकथाम होगी थी, लेकिन रस चूसने वालों का प्रकोप ऐसे ही बना हुआ था और उसमें जो मुख्य कीट था वो सफ़ेद मक्खी,
4: सफ़ेद मक्खी है
5: हाँ। तो उसके भी चलो इसकी रोकथाम की बाद में बातें करेंगे, इसका भी वही स्वभाव है इसमें, क्यों इसके जो शिशु होते हैं वो नीचे की सतह पर चिपके हुए रहते हैं, जैसे पानी की बूंद सी लगी रहती है ना इस प्रकार
4: जी,
5: में
4: जी,
5: दिखाई
4: जी।
5: देते हैं, चलते नहीं हैं, और ये सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद पंख वाली है, बड़ा महीन बारीक कीट है ये, थोड़ा सा पत्ते को डिस्टर्ब करते ही, छेड़ते ही उड़ के दूसरे पत्ते पर चला जाता है। तो इसके प्रकोप के कारण भी वही है कि पत्तियाँ मुरझानी शुरू हो जाती हैं और पीलापन हरापन गायब होने के कारण फिर किनारों से मुड़ना है, सूख जाती हैं, काली फफूंद लग जाती है इनके ऊपर, उसी प्रकार का इसका भी जो नेचर ऑफ डैमेज है या आक्रमण
4: नुकसान करने की जो इसकी ताकत है
5: हाँ वो इसी प्रकार
4: है, इसी तरह की है।
5: ये तो था रस चूसने वाले कीड़ों का,
4: ठीक है जी।
5: इसके अलावा सुंडियों की, जहाँ तक आपने कहा कि भाई बीटी वगैरह का
4: हाँ बिल्कुल
5: वो है, तो पहले था लेकिन पिछले 2-3 सालों से देखने को मिल रहा है कि एक कीट गुलाबी सुंडी,
4: अच्छा गुलाबी सुंडी
5: हाँ, इसमें इसका जो प्रकोप देखने को मिल रहा है जो भी अपने कपास वाले क्षेत्र हैं उनमें, तो इसका मतलब जो बीटी का जो गुण था एक सुंडियों को रोकने का वो इस कीट के प्रति कम हो गया वो, और इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसकी अगर इन कीटों की रोकथाम की थोड़ी सी बात करेंगे,
4: रोकथाम से पहले डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये कि इनकी जो अवस्थाएं हैं किस किस अवस्था में आएगी, जैसे आपने बताया कि कपास छोटी है
5: जी
4: तो इसका चुरडा का प्रकोप हो जाएगा, सतही टिड्डे हैं ये इस तरह का है, जैसे जैसे फसल बढ़ेगी
5: जी जी,
4: या जिन भाइयों ने थोड़ा सा अपने थोड़ा अगेती बिजाई कर ली थी वो थोड़ी बढ़वार पर होगी, तो वहाँ तो और भी कीड़े आएंगे इसका मतलब उसके अंदर।
5: तो ये है कि जितनी हम लेट बिजाई करते हैं उसमें कीड़ों का प्रकोप बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है।
4: अच्छा,
5: इसमें खासकर जो गुलाबी सुंडी का मैंने जिक्र किया है इसमें नुकसान ज़्यादा होगा।
4: तो गुलाबी सुंडी टिंडे की अवस्था में आएगी, पहले आ जाएगी,
5: आ तो पहले भी जाती है, फूल की अवस्था में आ जाती है ये, क्योंकि जब इसके फिरकीनुमा गुलाब की शक्ल में फूल इसके दिखाई देते हैं कलियों के ऊपर, फूल के ऊपर, आ तो पहले भी जाती है, लेकिन मेन नुकसान तो टिंडे में ही होना,
4: टिंडे में
5: ही
4: करेगा ये
5: हाँ। तो बाद में जब टिंडे लगते हैं तो सुंडी वहाँ से टिंडे के अंदर घुस जाती है और अंदर घुस के और 2 बीजों को जोड़ लेती है वो।
4: अच्छा,
5: और जैसे ही वो अंदर घुसती है तो बहुत छोटी अवस्था में होती है सुंडी, तो इसका जो घुसने का जो पॉइंट है वो बाद में दिखाई भी नहीं देता कि कहाँ से घुसी
4: बंद सा हो जाए एक तरह से वो।
5: जब टिंडा खराब होना शुरू होता है, गल जाता है, तो उसके बाद में ये लगता है कि इसके अंदर किसी ना किसी बीमारी या कीड़े का प्रकोप है, जब खोल के देखते हैं तो
4: उसमें
5: सुंडी मिलती है। कई बार टिंडा गलन की भी समस्या आती है तो वो खोलने से ही पता चलता है इसमें कि भाई गुलाबी सुंडी की वजह से है या टिंडा गलन बीमारी की वजह से ही है इसमें।
4: आपने जिक्र किया था कटुआ सुंडी का
5: जी,
4: वह न्यारी है
5: हाँ। कटुआ सुंडी तो जमीन के अंदर रहती है और वो जमीन की सतह से पौधे को काटती है वो।
4: अच्छा, तो नया वो फुटा होगा जो नहीं कोपड़ा होगी जो
5: हाँ।

0: बाद में आप जैसे फसल की बिजाई से पहले गहरी जुताई करना जरूरी है, और जैसे मैंने बताया कि मार्च के महीने तक जो भी छंटियां वगैरह जहां भी पड़ी हैं उनको झाड़ के और उनका जो कचरा वगैरह है उसको जला दें, नष्ट कर दें उसको, ताकि उसके अंदर जो छुपे हुए कीट हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसमें ज़्यादा देरी से इसकी बिजाई ना करें, जितना जल्दी हो सके बिजाई पूरी करें इसकी, क्योंकि जितनी देरी से होगी और कम अवधि में फसलें जो तैयार होने वाली किस्में हैं उनका प्रयोग ज़्यादा करें।
1: उनका इस्तेमाल करें, ये ज़रूरी है।
0: उसके बाद में अब शुरुआत में, क्योंकि लंबी अवधि की फसल है, जितने कीड़े आते हैं उतने ही मित्र कीट भी इसके ऊपर रहते हैं फसल
1: हाँ
0: के ऊपर,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: तो सीधा ये ना करके कि भाई कोई भी कीट दिखाई दिया उसके लिए तुरंत जो है रासायनिक कीटनाशकों की तरफ चल दे किसान भाई, ऐसा ना करें, क्योंकि प्रकृति का एक संतुलन है। जितने ज़्यादा इसमें कीट वो दुश्मन कीट हैं उतने ही मित्र कीट भी होते हैं
1: और
0: इसमें।
1: ऐसे कीट हैं जो इन नकाबू कर ले हैं।
0: जी, तो उनसे बचाव के लिए शुरुआत में जैसे मैंने बताया चुरड़ा या हरा तेला की शुरुआत होती है रस चूसने वाले कीड़ों में, तो इसके लिए हमने एक आर्थिक कगार भी बना रखा
1: एक लिमिट, एक सीमा
0: है।
1: रेखा है कि
0: हाँ,
1: इतने तक
0: कि
1: कीट है बस।
0: इतना कीट आएगा तभी हमने इसके रसायनों की तरफ जाना है, उससे पहले हमने नहीं जाना, तब तक मित्र कीट इसको काबू करते रहेंगे। और जो ये रस चूसने वाले कीड़े हैं, उड़ने वाले कीड़े हैं, इसके लिए एक है चिपकने वाला येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, पीले
1: अच्छा
0: रंग का, क्योंकि पीले रंग की तरफ आकर्षित होते हैं और
1: हाँ
0: वो चिपकने वाले एक किस्म से पिंजरे बना रखे हैं
1: हाँ
0: इनके लिए।
1: अच्छा
0: हाँ, वो ऐसे खेत के अंदर 5-7 जगह पे, जितनी ऊंचाई पे फसल की ऊंचाई होती है उसकी ऊंचाई तक लगभग, और वो पीले रंग के, या वैसे भी उसके ऊपर ग्रीस या कोई ऐसी चीज़ लगा दें पीले रंग के पृष्ठ वाले, किसी भी
1: वो
0: कोई
1: कोई कार्ड हो या कुछ किसी तरह का गत्ता
0: ऐसे
1: वगैरह
0: गत्ता
1: हो
0: हो
1: पीले
0: गया,
1: रंग
0: वो हो
1: का।
0: गया, या अदरवाइज उसमें भी मिल जाते हैं, बाजार में भी उपलब्ध होते हैं
1: हाँ
0: ऐसे, अगर खेत में 5-7-10 जगह लगा दें तो उसमें रस चूसने वाले उड़ने वाले जो भी कीट हैं वो उसके साथ चिपक जाते हैं, हमें रसायनों की ज़रूरत नहीं पड़ती।
1: मतलब वो एक तरह से इनका एक बचाव है, भी आगे उनकी अगली पीढ़ी ना आवे,
0: जी
1: वो
0: जी
1: उड़े खत्म हो जाए जो भी
0: जी
1: है।
0: और जो आर्थिक कगार की मैंने बात बताई कि इसकी एक संख्या है, वो उस संख्या पर आने के बाद में ही हमने रसायनों की तरफ जाना है, तो वो संख्या के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना
1: जी
0: चाहूँगा।
1: बिल्कुल।
0: जैसे हरा तेला है, तो हरा तेला की प्रति पत्ती दो बच्चे जो शिशु बोल हैं इसके, वो एक पत्ते के ऊपर औसतन दो, यानी कि हम 20-30 पौधों की हम जैसे खेत के अंदर घूम के देख लें, उसमें एक सबसे ऊपर की तरफ से एक पत्ती ले लें, एक बीच में से ले लें, एक नीचे से, पत्ती को पलट के हम इसकी संख्या को देखते हैं, चाहे वो सफ़ेद मक्खी की है चाहे हरा तेला की है।
1: जी
0: तो औसत अगर हमने 30 पौधों से हमने ये लिया है, तो औसत प्रति पत्ता अगर दो शिशु हमें मिल जाते हैं हरा तेला के, तभी हमें रसायनों की तरफ या छिड़काव की तरफ जाना है। इसी प्रकार से सफ़ेद मक्खी की जब हम ये करते हैं तो उसमें 8 सफ़ेद मक्खी के प्रौढ़ पंखों वाले सफ़ेद रंग के, वो अगर हमें प्रति पत्ता औसतन मिल जाते हैं तभी हमें इसके छिड़काव की तरफ जाना है।
1: अच्छा, छिड़काव में भी डॉक्टर साहब हम सीधे कोई रसायन ले लें या उसमें आजकल जैविक भी कई आ रहे हैं, कुछ नीम की दवाइयाँ आ रही हैं, शुरुआती तौर पर वो कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, बहुत आपने सही बात कही है, क्योंकि रसायनों पे एकदम हम जाते हैं तो खासकर सफ़ेद मक्खी जैसा ऐसा कीट है कि उसमें ये भी देखा गया है कि रसायनों के कारण इसकी अंडे देने की क्षमता बढ़ जाती है,
1: अच्छा
0: एक
1: हाँ,
0: आध ऐसे भी रसायन हैं उसमें।
1: वो तो उसके लिए फिर वरदान साबित हो
0: तो उससे, हाँ, तो उससे
1: गया।
0: पहले अगर हम नीम आधारित कीटनाशियों का इस्तेमाल करते हैं, तो नीम क्या करता है कि हमें हो सकता है कि इसकी संख्या या ये कीटनाशक के रूप में हमें इसका असर कम दिखाई दे, कि भाई संख्या तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसके और दूसरे गुण हैं, जैसे जो कीटों को ये एक दूर धकेलने का काम करता है फसल से, उसको नापसंद करने लग जाते हैं
1: उसकी
0: कीट।
1: मकारता जो है
0: हाँ,
1: वो भागते हैं,
0: यानी कि खाएगा नहीं तो हमारा काम चल गया,
1: चाल गया बस,
0: वो
1: बिल्कुल।
0: नुकसान नहीं करेगा, तो उनके अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है। तो
1: जी
0: इस प्रकार का असर आता है नीम आधारित कीटनाशकों का। तो उसके शुरुआत में 1 लीटर नीम आधारित कीटनाशी 200 से 250 लीटर पानी में, जैसी फसल की अवस्था है उसमें अगर हम शुरुआत के 1-2 छिड़काव कर देंगे तो इससे हमारा काफ़ी बचाव हो जाएगा, हो सकता है कि हमें रसायनों की ज़रूरत ही ना
1: ना
0: पड़े।
1: पड़े,
0: हाँ,
1: बहुत बढ़िया।
0: और रासायनिक जो, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं रस चूसने वाले कीड़ों की, बाद में सुंडी की बात करेंगे, तो इसमें जो रसायन की जो सिफारिश

0: की गई है। पहले वाले भी हैं हमारे पास रसायन, जैसे डाइमेथोएट रोगोर नाम से जैसे आती थी
1: जी
0: कीटनाशी, तो उसकी 250 से 350 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में, लगभग 200-250 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करने से हरियातेला, चूड़ा और सफ़ेद मक्खी तीनों के नियंत्रण के लिए है। कुछ नए कीटनाशी भी आए हैं जो बड़े अच्छे प्रभावशाली हैं, तो उनके नाम भी मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, वो
1: जरूर
0: उसको ज़रूर नोट कर लें। जैसे हरियातेला के लिए पायरी प्रोक्सीफेन और एफिडोपायरोपेन,
1: ये नाम थोड़े से नहीं, कोई बाजार के नाम आसानी से
0: बाजार के
1: नहीं
0: नाम में जैसे, अच्छा फ्लोनिकामिड है जो उलाला के नाम से बड़ा अच्छी तरह से जानते
1: अच्छा
0: हैं किसान
1: उलाला
0: भाई, उलाला।
1: जी
0: इसकी 60 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200-250 लीटर पानी में, और एक इसमें सफ़ेद मक्खी के लिए स्पायरोमेसीफेन है जो ओबिरोन के नाम से,
1: ओबिरोन,
0: हाँ
1: अच्छा
0: हमारे विश्वविद्यालय ने सिफारिश की हुई है इसकी ओबिरोन के नाम से, इसकी 240 मिलीलीटर मात्रा है। पायरी प्रोक्सीफेन है, ये डाइटा के नाम से आती है, ये 10 EC तरल में है ये, इसकी 400 मिलीलीटर मात्रा है।
1: ठीक है
0: और एफिडोपायरोपेन ये के सेफिना के नाम से आती है, इसकी भी 400 मिलीलीटर मात्रा है। तो इनमें से किसी एक कीटनाशक, ये बड़े अच्छे प्रभावशाली कीटनाशक हैं, कोई भी जो मात्रा बताई है इसको 200-250 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें तो इनकी रोकथाम हो जाती है इनकी
1: हो
0: ऊपर।
1: जाती है। अच्छा इसमें भी कुछ जैसे ग्रुप बना रखे हैं आपने जी, कि पहले इस ग्रुप की दवाइयाँ करो फिर दूसरे ग्रुप की करो कुछ।
0: वो ग्रुप हैं, अब जिस गुलाबी सुंडी का जैसे मैं जिक्र करूंगा, हालांकि
1: जी
0: जहां देसी कपास है वहां पर चित्तीदार सुंडी है, अमेरिकन सुंडी है, गुलाबी सुंडी है या तंबाकू की सुंडी है, ये इन सभी कीटों का प्रकोप हो जाता है, तो उसके लिए ये ग्रुप बनाए गए। अब बात वही है जो ग्रुप की बात कह रहे
1: हाँ
0: हैं,
1: जी हाँ जी हाँ
0: जो
1: जी
0: फसल की अवस्था अगर 60 से 120 दिन, 60 दिन से पहले हमें इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि जो इसकी नुकसान की अवस्था है वो कलियां, फूल और टिंडे की अवस्था में आता है, तो 60 से 120 दिन की जो फसल की अवस्था है उसमें दूसरे रसायन हैं, जैसे प्रोफेनोफोस है, प्रोफेनोफोस की 600 से 800 मिलीलीटर मात्रा है, या इमामेक्टिन बेंजोएट है, ये 100 ग्राम इसकी मात्रा है, या क्लोरपाइरीफास दवाई है, ये भी 800 मिलीलीटर से 1 लीटर की मात्रा है, इंडोक्साकार्ब है, ये 200 मिलीलीटर है, 14.5% की ताकत में आती है इंडोक्साकार्ब। तो इस प्रकार से एक ग्रुप ये है जो इसकी रोकथाम की जा सकती है, इनकी 200 से 250 लीटर पानी में इसका वो छिड़काव करें, और जब 60 120 से 150 इसके बाद की जो अवस्था आती है उस दौरान अगर हमें छिड़काव करना की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स जो दवाइयाँ हैं
1: अच्छा
0: उनकी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर लेमडासाई हेलोथ्रिन है, 200 मिलीलीटर मात्रा है, लेमडा के नाम से जानते हैं किसान भाई इसको, या साइपरमेथ्रिन 25 EC जो दवाई है इसकी 80 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से है, या जो अल्फा मैथ्रीन है 100 से 125 मिलीलीटर है, इस प्रकार से जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप की दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है
1: किया जा
0: इसमें।
1: सकता है। बचाव के कोई और भी रास्ते हैं जी? चलो दवाइयाँ तो एक रास्ता है जी हमारे पास है, तो कहीं कोई खपतवार, कोई नड़ा पता,
0: जी
1: कोई
0: जी
1: उस
0: जी
1: तरह का, वो भी अगर कर लेते हैं
0: ये
1: तो।
0: जितने भी इसमें चाहे सुंडी है, गुलाबी सुंडी है या रस चूसने वाले हैं, इसके लिए खरपतवार का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, तो खरपतवार जैसे अश्वगंधा है, पीड़ी बूटी है, कंगी बूटी है, साठी है या भाखड़ी है, उस समय की जो भी खरपतवार होती हैं, तो इसमें खरपतवार रहित अगर हम खेत को रखेंगे, डोलों को रखेंगे, तो इसका बड़ा योगदान है, और बिजाई में जो पूर्व पश्चिम की दिशा में अगर इसकी बिजाई की जाती है ताकि रोशनी और हवा का आवागमन उसमें ठीक रहे, और साथ में जो दूरी है पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी है वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोकथाम की बात है, इसमें भी ये आवश्यक है। और इसके अलावा जो नत्रजन वाली, नाइट्रोजन वाली जो खाद हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, किसान भाई ये सोच लें कि भाई मेरी फसल की जो ना बढ़वार कम हो रही है या मैं और ज़्यादा इसके अंदर यूरिया डाल दूं, जितना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे उतना ही फसल के अंदर कच्चापन ज़्यादा आएगा और उसमें रस चूसने वाले भी और जो सुंडियाँ वगैरह हैं इनका प्रकोप ज़्यादा होगा उसमें।
1: ज़्यादा होगा, लेकिन जो
0: जी
1: भी छिड़काव करें वैज्ञानिकों की सलाह मशवरा के साथ करें,
0: जी
1: कृषि विज्ञान केंद्रों से दोस्ती बढ़ाएं अपनी, वहाँ के वैज्ञानिक आपके लिए हैं भाइयों, वहाँ जाएं सलाह मशवरा करें, और ज़्यादा ज़रूरत हो तो पौधा लेके भी जा सकें, उड़े कोई पत्ती ले जाए, कोई पौधा ले जाए, दिखाएंगे तो निश्चित तौर

0: अच्छा समाधान उड़ जाके मिलेगा। कुछ और कहना चाह रहे हो डॉक्टर साहब?
1: ना बस यही है, जो प्रबंधन की जो चीज़ें हैं
0: वो बहुत महत्वपूर्ण है,
1: वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंचाई है, समय पे सिंचाई देनी है, या साथ में जो बीमारियां आती हैं उनकी भी रोकथाम करके रखें, क्योंकि पौधा जितना कमज़ोर होगा उतना ही दूसरे
0: बीमारी उसके ऊपर
1: ज़्यादा आएंगी।
0: जी बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश कुमार जी, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी।
1: धन्यवाद संपूर्ण भाई,
2: नमस्कार। और इस बातचीत के साथ है कृषि जगत कार्यक्रम का दसवां अध्याय समाप्त। आगे सुनेंगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र और ईब सुनेंगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और भाई ग्रामीण संसार में भाइया ने बातचीत भी सुनवाओगे, अग्नि भी सुनवाओगे, लेकिन थोड़ा हा जिक्र कर लें पहले कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं यानी कि संख्या में कम हैं और उनके लिए सरकार के कुछ कर रही है आवास जो योजनाएं हैं उनके लिए, उनमें कितना अनुदान उन्हें मिल रहा है और किस प्रकार से अनुदान हमने लेना है तो उनके लिए, क्योंकि भाई जो जीवन में अपनी ज़रूरतें हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो भाई आवास की जो सुविधा है वह सब ने मिल रहा है, यू प्रयास सरकार का भी है और हमने भी ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम भी जो अल्पसंख्यक हैं और जो पूरी शर्त करें हैं कि भाई सारी की सारी जो उन्हें मिलने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो उनके पास से हैं तो वो इस योजना का सही तरीके से लाभ उठा सकें। रही बात मौसम की, देखो मौसम का ऐसा है कि भाई तापमान बढ़ता जा रहा है। दोपहर को भी ये कर था अपना कृषि जगत में भी ये बात चल रही थी, क्योंकि दोपहर को तो बहुत ज़्यादा मौसम का तापमान जो है बढ़ता चला जा है। इसे में हमने अपना भी, बच्चों का भी, अपना जो पशुधन है उसका भी सही तरीके से ध्यान रखना जरूरी हो गया है। खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं भाई नंगे पैर बाहर चल पड़े हैं, फर्श भी गर्म हो है, ऊपर से भी धूप हो है, तो बाहर धूप में निकलन देन में थोड़ा हा ध्यान बच्चों का रखना चाहिए। और जब बाहर धूप में कहीं जाना ही पड़ जाए साथ में अपना पानी लेकर जरूर जाना चाहिए। सिर पे अपना लत्ता लुगड़ा जरूर रखें। खेत क्यार में हालांकि काम करना पड़े है तो उस मौके पर भी सिर पे भी अपना कुछ चद्दर वगैरह तौलिया वगैरह यूँ जरूर होना चाहिए और पीने का पानी जरूर साथ में रहना चाहिए। खास तौर पर आगे चाल के देखो गर्मी तो सही से मच्छर इनका भी प्रकोप होया करे है और इसमें बहुत सी बीमारियां ही फैले हैं, तो ज़रूरी है कि हम पहले उनका समाधान करें, कोशिश करें समाधान करने की, क्योंकि इलाज तो परहेज बढ़िया बताया है। जो चीज़ नुकसानदेह है और वह हमने दिखा है दूर तक कि भाई इससे नुकसान हो सके है तो उससे पहले हम परहेज कर लें या कोशिश करें उससे बचने की, तो फिर हमारा जो है स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारा जो अनावश्यक जो खर्च है वो भी हमारा बचेगा और वो जो खर्च है वो और कितने काम आओगा। और स्वास्थ्य देखो कमजोरी आ जाए बीमार होने के बाद तो जरूरी है कि पहले हम स्वस्थ रहने की कोशिश करें, भाई सवेरे शाम थोड़ा बढ़िया जब ठंडी हो जाए उस टाइम पर थोड़ा हा घूम काम दूर ताई पैदल चलने की कोशिश करें। तो भाई इससे उस पर एक भैया ने बातचीत सुनवाओगे, हालांकि पूर्व प्रसारित बातचीत है लेकिन सारी अणकामान की है, मलेरिया रोग कारण और इसके उपचार, तो सुनाइए बातचीत।
3: आज बातचीत करेंगे मलेरिया रोग और उसके कारण और उपचार के बारे में, और उसके अलावा मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं इसका भी जिक्र करेंगे। इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर शिव कुमार जी को। आप सेवानिवृत्त चिकित्सक हैं और अभी भी समाज सेवा में आप लगे हुए हैं चिकित्सक के कार्य में, तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्टूडियो में।
4: धन्यवाद जी।
3: सबसे पहले तो जानकारी चाहूँगे कि मच्छर से कौन कौन से बीमारी हैं, रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं?
4: हाँ, तो तीन तरह के मच्छर होते हैं। एक एनाफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है, जो मादा मच्छर के काटने से बीमारी होती है। अच्छा। तो मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया
3: जी,
4: मादा एडीज मच्छर से डेंगू और चिकनगुनिया
3: जी,
4: और मादा क्यूलेक्स मच्छर उससे जापानीज एनकेफलाइटिस।
3: अच्छा, तो पहले जिक्र करेंगे मलेरिया का।
4: जी हाँ,
3: तो ये मच्छर के काटने से जैसे आपने बताया कि होता है, तो इसका किस तरह से शरीर पर किस तरह से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और किस तरह से ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं?
4: इसमें सबसे पहले बुखार होता है, तो इसको तैये का बुखार बोलते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन चढ़ना।
3: अच्छा।
4: हाई ग्रेड फीवर होता है जिसमें सिर में दर्द और उल्टियां लग जाती हैं
3: जी,
4: जो जो बुखार तीसरे दिन चढ़े

0: तो वो मलेरिया बुखार हो सकता है।
1: अच्छा, मतलब एक दिन छोड़ के फिर अगर बुखार आ रहा है तो ये लगा लें कि मलेरिया है।
0: हाँ जी, साथ में सिर दर्द और उल्टी
1: जी,
0: ये शिकायत भी हो सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसका कोई टेस्ट वेस्ट भी करवा सके हैं, पता चल जाए?
0: हाँ जी, कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, तो टेस्ट जरूरी है इसका। तो ये जो हर उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सामान्य जो अस्पताल हैं, इन सब में टेस्ट की सुविधा है
1: जी।
0: तो इसमें स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड से पता लगता है कि अपने यहाँ हरियाणा में दो तरह का जो मलेरिया है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम।
1: जी,
0: तो फैल्सीपेरम थोड़ा खतरनाक होता है, तो वो स्लाइड से जांच से पता लग जाता है कि भाई कौन सा मलेरिया है। और जांच में अगर पॉजिटिव आता है तो फिर इसकी दवाई क्लोरोक्विन की टेबलेट होती हैं, तो वो 3 दिन देनी होती है, पहले दिन 4, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 2। तो ये अडल्ट आदमी के है, 14 साल से ऊपर को हम अडल्ट मानते हैं,
1: जी,
0: और 1 साल से छोटे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को ये दवाई ना दें।
1: जी डॉक्टर साहब, एक इससे पहले थोड़ा सा और बात करेंगे, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि जो टेस्ट है ये हमने शुरुआत में करवाना चाहिए या कई बार दवाई ले ले हैं, 2-3 दिन दवाई लिया फिर पता चला कि ये ज़्यादा दे कि बुखार चढ़ रहा है, या एक दिन छोड़ गए एक दिन चढ़ रहा है, तो उसके बाद टेस्ट करवाऊँ तो उसमें कुछ फ़र्क रहेगा?
0: हाँ, तो मैंने बताया कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है
1: जी,
0: तो कोई भी बुखार होते ही स्लाइड जरूर बनवाएं।
1: अच्छा,
0: ताकि जल्दी पता लग जाए और उसमें दिक्कत ना हो मरीज को भी।
1: जी, बीच में अगर दवाई ले ले तो उसका कुछ टेस्ट पे असर पड़ेगा ना सर?
0: हाँ, अगर तो उसने क्लोरोक्विन की गोली बगैर डॉक्टर की सलाह के बगैर खा ली है
1: जी,
0: तो उसमें चांसेस हैं कि वो नेगेटिव आ सकता है टेस्ट।
1: जी डॉक्टर साहब, कितना नुकसानदायी हो सकता है ये बुखार?
0: मलेरिया बुखार जो साधारण बुखार है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, तो इसमें पहले 3 दिन क्लोरोक्विन खा लें, फिर प्राइमाक्विन देते हैं एडल्ट आदमी को 15 मिलीग्राम रोज 2 हफ्ते तक, तो ये लगातार खा लें तो उसमें बुखार जड़ से ख़त्म हो जाता है। अगर मलेरिया अगर बुखार फैल्सीपेरम है तो वो खतरनाक बुखार होता है, उसमें भी पहले 3 दिन क्लोरोक्विन की गोली खाते हैं, पहले दिन 4, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 2, फिर साथ में इसमें 3 ड्रग का रिज्यूम होता है, एक आर्टिसुनेट सल्फाडोक्सिन पायरीमिथामिन पहले दिन देते हैं, दूसरे दिन आर्टिसुनेट और प्राइमाक्विन दूसरे दिन देते हैं, और तीसरे दिन खाली आर्टिसुनेट। तो इसमें जो प्राइमाक्विन की डोज है वो पीवी से 3 गुना ज़्यादा देते हैं, जैसे उसमें 15 मिलीग्राम मैंने बताया 2 हफ्ते तक देनी है, तो इसमें 45 मिलीग्राम केवल 3 दिन तक देनी है
1: जी,
0: 45 मिलीग्राम।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें जितना जो शरीर का तापमान है वो कितने तक जा सके और कितना खतरनाक हो सके है?
0: वैसे कोई भी बुखार हो तो उसके लिए अगर बहुत तेज बुखार हो तो ठंडे पानी की पट्टी साथ साथ करें। तो ये जो बुखार है, पहले तो हाई ग्रेड फीवर होता है
1: जी,
0: इसमें ठंड इतनी कपकपी लगती है कि रजाई भी उड़ा दें जब भी कपकपी दूर नहीं होती
1: जी।
0: तो पहले स्टेज होती है कपकपी, दूसरी स्टेज होती है हाई ग्रेड फीवर, और तीसरी स्टेज होती है ठंड, मरीज बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ जाता है
1: जी।
0: तो ये बुखार अपना आप स्वतः ही बगैर दवाई एकदम डाउन हो जाता है
1: जी।
0: तो इसमें अगर बहुत तेज बुखार हो तो खासकर छोटे बच्चों में वो दिमागी बुखार उसको
1: कह सकें।
0: हाँ जी,
1: कि
0: तो उसमें
1: ठंडे
0: पानी की पट्टी
1: जी,
0: माथे पे, हाथ की हथेली पे और पैर के तड़वों पे ठंडे पानी की पट्टी रख दें तो उससे बुखार काफ़ी कम हो जाता है। कभी भी ठंडे पानी की पट्टी पेट पे, छाती पे, पैरों पे ना करें, हाथों पे
1: जी।
0: तो हाथ की हथेली में 2 रुमाल पकड़ा दो और पैर के तड़वों पे और माथे पे, तो ठंडे पानी की पट्टी करने से 2-3 डिग्री तो वैसे ही बुखार कम हो जाता है
1: जी।
0: और फिर स्लाइड बना के अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये पूरा इलाज इसका संभव है। हमारे रोहतक ज़िले में हम देख रहे हैं कि मलेरिया कम था पिछले बनिस्पत 3-4 सालों से
1: जी।
0: 2020 में मैक्सिमम 6 केस थे रोहतक ज़िले में
1: जी,
0: 2021 में 0 था, कोई केस नहीं था
1: जी,
0: 2022 में 3 और 2023 में भी 3 केस थे, और मलेरिया का अभी तक कोई इस साल कोई जो 24 में कोई केस नहीं आया है
1: जी।
0: डेंगू के केस ज़्यादा होते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा जिस तरह आपने बताया था कि डेंगू है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं?
0: डेंगू बुखार एक तो जो इसके मच्छर है ना, साफ पानी में होते हैं।
1: अच्छे
0: छत पे टूटे हुए मटके, टायर, और अगर एक चलो पानी भी हो ना तो उसमें भी वो मच्छर पैदा हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: मच्छर पहले अंडे देता है
1: जी,
0: फिर प्यूपा, फिर लार्वा, फिर पूरा मच्छर बनने में 7 से 10 दिन लगते हैं
1: जी।
0: तो दूसरा जो मलेरिया के भी मच्छर ऐसे ही होते हैं, पहले अंडे, प्यूपा, लार्वा, पूरा मच्छर बनने में 10 दिन लगते हैं। तो हम उस साइकिल को ही, अब मैं बचाव के आपको बताऊंगा तो उस साइकिल को ही मतलब खाली
1: डॉक्टर साहब बचाव का बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा
0: डेंगू के बारे में।
1: हाँ,
0: तो डेंगू का जो मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर से डेंगू होता है
1: जी।
0: डेंगू के लक्षण दो तरह का डेंगू होता है, एक साधारण डेंगू, एक खतरे वाला डेंगू
1: जी।
0: तो साधारण डेंगू में हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, बुखार के साथ हर जोड़ दुखने लग जाता है
1: जी।
0: सिर में दर्द, बहुत तेज सिर में दर्द, पैरी ऑर्बिटल पेन, आंखों के चारों ओर गुब्बे चलना
1: जी,
0: और वोमिटिंग सेंसेशन, उल्टी आने का मन
1: जी,
0: और शरीर पे छोटे छोटे खसरे की तरह लाल दाने हो जाते हैं। तो ये 5 लक्षण हैं, हड्डी तोड़ बुखार, सिर में दर्द, और उल्टी आना, और आंखों के चारों ओर गुब्बे चलना, और शरीर पे छोटे छोटे लाल लाल दाने होना। तो जरूरी नहीं कि 5 ही लक्षण हो
1: जी,
0: केवल एक भी लक्षण हो तो उसमें इसकी जांच होती है, जांच करनी चाहिए। तो जांच में ज़्यादातर लैब कार्ड टेस्ट करते हैं, तो सरकार कार्ड टेस्ट को नहीं मानती
1: जी।
0: अब वो एलाइजा टेस्ट करते हैं और उसके रेट भी सरकार ने निश्चित कर दिए, चाहे वो प्राइवेट लैब हो चाहे कोई भी हो, 600 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे
1: जी।
0: और उससे पता लगता है कि भी IgG है या IgM है। तो IgM जो है वो करंट इन्फेक्शन को बताता है, और IgG अगर पुराना डेंगू इन्फेक्शन है उसको दर्शाता है
1: जी।
0: तो इसका इलाज, सबसे बेस्ट इलाज है पैरासीटामोल।
1: अच्छा।
0: पैरासीटामोल, इसकी एंटीबायोटिक का इसका कोई रोल नहीं होता डेंगू का
1: जी।
0: मलेरिया में तो क्लोरोक्विन प्राइमेक्विन देते हैं, पर डेंगू में क्लोरोक्विन प्राइमेक्विन का रोल नहीं है। तो इसमें पैरासीटामोल ड्रग ऑफ च्वाइस, और इसमें हाई ग्रेड फीवर ना होने दें। तो वही अगर बुखार 105-106 डिग्री होता है तो उसमें जान का खतरा भी होता है, और बच्चा बड़ा जो भी बड़बड़ाने लगता है।
1: अच्छा।
0: तो तुरंत नहला देना चाहिए
1: जी।
0: तो नहाने से किसी को 106 डिग्री है तो 2 डिग्री तो नहाने से ही कम हो जाएगा, 104
1: जी।
0: फिर ठंडे पानी की पट्टी माथे पे, आँखों पे, और हाथ की हथेली और पैर के तलवों पे, तो 2-3 डिग्री उससे कम हो जाएगा। फिर पैरासीटामोल की खुराक इसको बार बार देनी पड़ती है, ये थोड़ा जिद्दी बुखार होता है
1: जी।
0: एक गोली दे दी, 4-5 घंटे ठीक हो गया, फिर दोबारा हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो जब भी बुखार चढ़े पैरासीटामोल की गोली दें
1: जी।
0: तो ये तो है साधारण डेंगू के लक्षण और पैरासीटामोल इसका इलाज
1: जी।
0: जो खतरनाक डेंगू है तो उसमें ये 5 लक्षण तो हो सकते हैं सारे, ये
1: जी,
0: कि हड्डी तोड़ बुखार, सिर में दर्द, और उल्टी आने का मन, शरीर पे जो लाल लाल दाने थे वो बड़े बड़े चतकों में बन जाते हैं, बड़े बड़े चतके बन जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और इसमें जो है खून जमने की प्रतिक्रिया जो है, हमारे ब्लड में 3 चीज़ें होती है, प्लेटलेट्स, और सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, और लाल रक्त कणिकाएँ
1: जी।
0: तो इसमें डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और प्लेटलेट्स का काम है खून को जमाना
1: जी।
0: तो इसमें अगर नाक से नकसीरी
1: जी,
0: सबसे पहले आँख से ले, आँखों में खून लाली आ जाए
1: जी,
0: नाक से नकसीरी, मसूड़ों में से खून, खून की उल्टी, पेशाब में खून
1: जी,
0: और गुदा में खून, और महिलाओं में जो माहवारी है वो 3 से 5 दिन तक ठीक हो जाती है, पर इसमें लंबे 15-15 दिन तक डेंगू बुखार में वो ठीक नहीं होती
1: जी।
0: तो इसके लिए मरीज को जांच करके, एलाइजा टेस्ट करके, और फिर इसमें वो प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, निखालस प्लेटलेट्स।
1: अच्छा।
0: तो प्लेटलेट्स अपने PGI रोहतक में उपलब्ध है, तो SDP होते हैं, एक सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। तो उस आदमी की पूरी प्लेटलेट्स निकाल के उस बीमार आदमी को चढ़ा देते हैं, तो उसकी जो खून जमने की प्रतिक्रिया कमज़ोर पड़ गई वो दोबारा ठीक हो जाता है मरीज, नहीं तो इतना घातक है कि इसमें जान भी जा सकती है
1: जी।
0: अगर प्लेटलेट नहीं चढ़े तो प्लेटलेट्स ही इसका उपचार है खतरनाक डेंगू का
1: जी। कुछ दवाइयों से भी हम प्लेटलेट्स बढ़ा सके हैं?
0: दवाई इसमें केवल जो मैंने बताया ना, खून में
1: जी
0: 55% तो लाल लाल पानी जिसको प्लाज्मा बोलते हैं
1: जी,
0: 45% जिसमें प्लेटलेट्स, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ। तो प्लेटलेट्स इसको उपचार है, मैंने बताया था कि इसके लिए कोई दवाई कारगर नहीं है
1: जी।
0: दवाई अगर तेज बुखार है तो पैरासीटामोल ही इसकी दवाई है
1: जी।
0: और ठंडे पानी की पट्टी और हाइग्रेशन, उसको ना सिकंजवी एक गिलास में दो चम्मच चीनी, चार पांच चुटकी नमक और आधा नींबू डाल के मिट्टी और नमकीन सिकंजवी बार बार दें ताकि पानी की कमी ना हो
1: जी।
0: इसमें बीपी डाउन हो जाता है तो ब्लड प्रेशर डाउन ना होने दें
1: जी। डॉक्टर साहब एक और आपने बताया था चिकनगुनिया।
0: चिकनगुनिया जो बुखार ये होता है ये हमारे रोहतक ज़िले में नहीं है, ये जहाँ पे जीरी ज़्यादा होती चावल, यहाँ से ले लो आप पानीपत
1: जी,
0: करनाल, जगाधरी, यमुनानगर, कैथल
1: जी,
0: अंबाला, तो इन जिलों में पानी जो जीरी ज़्यादा होती है और जीरी हमेशा पानी में होती है, तो इसका जो क्यूलेक्स मच्छर है वो पानी के अंदर 2 फुट नीचे जाता है फिर ऊपर आके सांस लेता है।
1: अच्छा।
0: फिर 2 फुट नीचे जाता है फिर सांस लेता है, तो क्यूलेक्स मच्छर वहीं ज़्यादा होते हैं। और ये जो मच्छर है सबसे, जो इसका बीमारी है सबसे खतरनाक है
1: जी,
0: इसको बोलते हैं गर्दन तोड़ बुखार
1: जी।
0: बुखार हाई ग्रेड फीवर होगा और गर्दन अकड़ जाएगी उसको
1: जी,
0: और मेनिंजाइटिस हो जाती है, जो दिमाग में, जो दिमाग में स्वेलिंग हो जाती है तो उससे गर्दन अकड़ जाती है, तो ऐसे में तुरंत उसको एडमिट करवाना चाहिए हॉस्पिटल में, और इसमें एंटीबायोटिक उसको इंजेक्टेबल देंगे तब वो जाके ठीक होता है।
1: इसका कोई टेस्ट भी करवा सकें डॉक्टर साहब?
0: हाँ जी, इसका भी टेस्ट होता है जो एलाइजा टेस्ट है, उससे पता लग जाता है। वैसे इसमें सबसे बेस्ट टेस्ट होता है CSF, सेरिब्रल स्पाइनो फ्लूड, रीढ़ की हड्डी में उसका पानी निकाल लेते हैं और उस पानी की जांच करते हैं कि उसमें ये कीटाणु तो नहीं है
1: जी। तो डॉक्टर साहब अब बात करेंगे कि ये जो फैलाव होता है इसका, उसके जो जो कारण हैं उनको हम किस तरह से रोक सके हैं।
0: सबसे पहले कि हमारे हरियाणा सरकार ने एक ड्राई डे निश्चित किया है कि हर रविवार को लोगों से एक अपील की गई है
1: जी,
0: कि अपने घर के आसपास जहां भी पानी, पहले बात तो इकट्ठा ना होने दें, अगर होता भी है तो उसमें एक चम्मच काला तेल या मिट्टी तेल डाल दें
1: जी।
0: और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक टेमीफास सॉल्यूशन मिलता है, तो एक बाल्टी में 2.5 ml डाल लें तो सफ़ेद पानी हो जाता है वो
1: जी।
0: तो उसको पानी की टंकी में भी डाल सकते हैं, पीने वाले पानी में टंकी की उसमें भी डाल सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और जहाँ पानी इकट्ठा हो वहाँ भी डाल सकते हैं काला तेल, मिट्टी तेल, तो जो उसके लार्वा है मच्छर के, अंडे लार्वा, वो नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं
1: जी।
0: तो पानी इकट्ठा ना होने दे, जहाँ पानी इकट्ठा है तो उसमें काला तेल, मिट्टी तेल या टेमीफास का वो करें
1: जी। डॉक्टर साहब इसमें बीमारी के दौरान खान पान है वो किस तरह का रखना चाहिए?
0: खान पान इसमें ज़्यादा घृष्ट भोजन ना लें, क्योंकि डेंगू में तो मैंने बताया कि उल्टी आने का मन हो जाता है और एसिडिटी बन जाती है
1: जी।
0: तो साधारण भोजन जो घर में हम रोटी, सब्जी, दाल, दूध, दही, लस्सी सब ले सकते हैं
1: जी,
0: और बाज़ार की चीज़ ये फास्ट फूड खासकर चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, हॉट डॉग, इस तरह की चीज़ें ना लें, हलवा, चूरी जिसमें घी ज़्यादा डले वो चीज़ें ना लें
1: जी।
0: बाकी रोटी, सब्जी, दाल वो लें, नमकीन और मीठी सिकंजी लें। दूसरा जो मैंने बताया कि कुछ एक सावधानी है कि पूरे कपड़े डाल के रखें ताकि मच्छर काटे नहीं उसको। दूसरा कुछ दवाई होती है वो दवाई शरीर पर लगाने से मच्छर फिर उसको काटता नहीं है
1: जी,
0: और नहीं तो सरसों का तेल की मालिश कर लो तो उससे भी मच्छर नहीं काटेगा
1: जी। सब कई बार घर में भी कई बार वो बत्ती सी जला देते हैं तो वो भी कुछ ठीक है?
0: हाँ, जो बत्ती जलाते हैं उसकी धुआं से मच्छर नष्ट हो जाते हैं, उसमें एडल्ट मच्छर भी ख़त्म हो जाता है
1: जी। डॉक्टर साहब इसमें फिर और क्या कुछ ध्यान रखें कि ये जो रोग है ये ज़्यादा ना फैले और मच्छरों का खास तौर से प्रबंध?
0: तो इसमें आजकल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, पहले डेल्टा मैथ्रिन स्प्रे होती थी वो पूरे उसमें करते थे, तो इसमें देखा गया था कि लोग भैंस जहाँ बनती है वहाँ तो छिड़काव करवा लेते थे
1: जी,
0: और जो सोने के कमरे हैं जहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते हैं उसमें नहीं करवाते थे तो अब ये कर दिया कि जहाँ भी केस, पॉजिटिव केस आता है
1: जी,
0: उसके केवल 50 घरों के आसपास वो स्प्रे, डेल्टा मैथ्रिन की स्प्रे की जाती है
1: जी,
0: और लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वो स्प्रे पूरे हर मकान के कोने तक करवाएँ। और इसके अलावा फोगिंग भी करवाई जाती है,
1: धुआं जो छोड़ते हैं,
0: धुआं जो पायरीथ्रम 2% में पेट्रोल में मिक्स करके उसकी धुआं छोड़ते हैं तो धुआं से भी एडल्ट मच्छर नष्ट हो जाते हैं
1: जी।
0: धुआं छोड़ते वक्त खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि धुआं अंदर तक जाए और मच्छर पे पूरा असर करे
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया है कि मच्छरों से जो होने वाले रोग हैं उनके नियंत्रण के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मच्छरों पर ही नियंत्रण पाया जाए, और भाई ये ना सोचें कि ये तो खड्डा है पड़ोसी के घर के पास में है या यहाँ वहाँ पानी खड़ा हो रहा है, मच्छर है वो उड़ के कहीं भी जा सकें, किसी को भी नुकसान पहुँचा सके हैं। तो बढ़िया ये रहेगा कि कहीं भी पानी खड़ा दिखाई दे है तो उसने या तो ख़त्म कर दें, या उसके अंदर जिस तरह आपने बताया काला तेल है या इस तरह का कोई पदार्थ है वो उस पर डाल दें, ताकि मच्छर है वो वहाँ पर अपने अंडे बच्चे ना दे सके। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर शिव कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू जी। बेहतर सुनी भैया ने बातचीत, और ही भैया का कराऊंगे मनोरंजन, भाइयों को एक रागनी सुनवाऊंगे, गायक कलाकार होंगे जयपाल सिंह आर्य और उनके साथी।

और भाई जयपाल श्रृंगारिया और साथियों की गाई उड़ी शरागनी के साथ ही देख लिया गड़ी का नया कार्यक्रम का समय हुआ समाप्त। बलजीत भाई ने दें इजाजत, सारे बण भाइयों ने राम राम।

आप सुन रहे थे ग्रामीण संसार कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। उससे पहले आपको दे दें कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे सूचनाएं। ये सूचना हमें मिली है थाना आसोदा जिला झज्जर से। इसके अनुसार राजा राम पुत्र शिवचरण गांव धरोली निवादा लोहचंद थाना बैनीगंज जिला हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हाल फिलहाल किराएदार हैं जाखोदा जिला झज्जर में। सूचित करते हैं कि उनकी बेटी रंजना जिसकी है 22 मार्च 2026 को घर से लापता है। संजना का हुलिया आपको बताए देते हैं। रंग गोरा, गोल चेहरा, पतला फुर्तीला शरीर है, कद 5 फुट है, उम्र जैसा कि हमने बताया 24 साल है। घर से जाते वक्त इसने हरे रंग का सूट सलवार पहने हुए थी। कोई भी सूचना आप इस नंबर पर दे सकते हैं 705-66-6। इसे दोबारा सुन लीजिए 705-66-7228। ये सूचना मिली है थाना महम जिला रोहतक से। इसके अनुसार दर्शना पत्नी रामफल निवासी वार्ड नंबर 3 महम रोहतक, जो कि 23 मई 2026 को सुबह 5 बजे घर से बिना बताए चली गई है। हुलिया इस प्रकार है, रंग गेहुआ है, गोल चेहरा, मजबूत शरीर, कद 5 फुट है, दाहिने शैली के ऊपर पुरानी चोट का निशान है, उम्र 65 वर्ष है इस महिला की। क्रीम कलर का कुर्ता, लाल रंग की सलवार, पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए है। कोई भी सूचना आप दर्शना के बारे में इन नंबरों पर दे सकते हैं 708-299-9127 अन्य नंबर है 708-299-9153। ये सूचना भी मिली है थाना महम जिला रोहतक से। इसके अनुसार मनदीप पुत्र स्वर्गीय सतबीर निवासी किशनगढ़ महम जिला रोहतक, सूचित करते हैं कि उनकी माता शीतल जिसकी उम्र 48 वर्ष है 6 मई 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, रंग सांवला, गोल चेहरा, पतला शरीर, कद 5 फीट है। कोई भी सूचना शीतल के बारे में आप इन नंबरों पर दे सकते हैं 708-299-9127 अन्य नंबर है 708-299-9153। पुलिस कंट्रोल रूम रोहतक का नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 9996464100। ये सूचना हमें मिली है थाना आसोदा जिला झज्जर से। इसके अनुसार मुनीश पुत्र राजेंद्र निवासी गांव जाखोदा जिला झज्जर, सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी मोनिका उम्र 15 साल 26 मई 2026 को घर से कहीं बिना बताए चली गई है। हुलिया इस प्रकार है, रंग गोरा, गोल चेहरा, सामान्य शरीर, कद 5 फुट 5 इंच, उम्र 26 साल है इनकी, जो कि ऊपर गलत दर्शाई गई थी 15 साल, इनकी उम्र 26 साल है। कोई भी सूचना मोनिका के बारे में आप इस नंबर पर दे सकते हैं 705-66-7228। आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे सूचनाएं। हम आकाशवाणी रोहतक से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं एक था दिल एक थी धड़कन फिल्म के इस गीत के साथ अभिजीत की आवाज़ है।

धड़कन फिल्म से गीत हमने सुना, जिसमें युगल स्वर थे अभिजीत और अलका याग्निक के। समीर ने इस गीत को रचा था और इसके लिए धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आइए सुनते हैं हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म से गाना, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। इस गीत के लिए संगीत दिया अनु मलिक ने।

हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म से गीत हमने सुना और अब आपको सुनाने जा रहे हैं दुल्हन हम ले जाएंगे इस फिल्म से गाना, जिसमें युगल स्वर अलका याग्निक और सोनू निगम के हिमेश रेशमिया ने इस गीत के लिए तर्ज बनाई है।

अब आइए सुनते हैं देव कोहली का लिखा गीत, जिसके लिए संगीत दिया राम लक्ष्मण ने, आवाज़ें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। फिल्म का नाम है हम आपकी हैं कौन।

इंदीवर के लिखे गीत के लिए धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ें हैं शब्बीर कुमार, अलका याग्निक और साथियों की। फिल्म का नाम मैं तेरा दुश्मन।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गाना, जिसके लिए धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ लता मंगेशकर की है, दुश्मन फिल्म से।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में नगीना फिल्म से गीत हमने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी रोहतक से बोल रही हैं। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं तलत अजीज़, सुनते हैं इनके स्वर में कुछ गज़लें।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम। आज कलाकार थे तलत अज़ीज़। हमने सुने इनकी स्वर में कुछ गज़लें। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेज़ी में। रिले कर रही हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डी के शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गयी। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत का लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में

ये आवाज़ें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं जसपिंदर नरूला की आवाज़ में ये गाना।

0: लगेगा इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम एक फिल्म से। आज की फिल्म थी चोरी चोरी चुपके चुपके। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
1: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
2: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, जिस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खासतौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून है या उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
2: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पे सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
1: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
2: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान

0: जाते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें, लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है, या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ओआरएस का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ओआरएस का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
0: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा जैसे मैंने बताया नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं, क्या ये शरीर के लिहाज से स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी, दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलें। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसमें से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाए, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए, धूप रहते मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का ले, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
0: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के लोग ले सकते हैं। लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आएं, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खासतौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी, और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है। लेकिन गर्मी में ना जाए, और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
0: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं, वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ जाता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
1: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है, और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
0: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें, तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटे नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं, तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोता इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
1: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना। ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Insights. This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. The participants are Abhijit Deb, senior journalist, and Ramya, anchor.
3: Good evening, listeners. Welcome to the weekly program Insights. Today, we will be discussing about the Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. To shed more light on this, we have with us senior journalist from Assam, Abhijit Deb. Welcome to the program.
4: Thank you.
3: Before we begin the program, let's listen to what Chief Minister Hemant Biswa Sarma said after the passing of the bill.
5: Assam Assembly has adopted Uniform Civil Code 2026. Assam will be the third state after Uttarakhand and Gujarat to adopt Uniform Civil Code. Adoption of Uniform Civil Code was one of our commitments in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of Assam Assembly, immediately after the election, we could adopt this historic bill. Now this bill will go for assent of Mahamohim Rashtrapati ji. Once we get the assent, the bill will be implemented in Assam. This process normally takes 3 to 6 months.
3: The Assam Legislative Assembly passed the Uniform Civil Code Bill yesterday, becoming the first state in the Northeast and the third in the country to adopt such a legislation after Uttarakhand and Gujarat. Could you please explain elaborately about the UCC and also in simpler terms talk about what the bill is all about and what does it aim to achieve?
4: As you told, that is the third state in India to enact UCC, Uniform Civil Code. Silent features of bill is all about banning polygamy. That is the first thing. Second thing is about live-in relationship. And third thing is about giving equal rights to the woman.
3: Right. And what does the bill aim to achieve? Can you elaborate a bit?
4: Look, in Assam, it's a bit tricky. There are a lot of tribals who are also there who follows the customary laws of their own tribe and all that. But they have been excluded from this bill. They are not under the purview of this bill. What this bill intends to do, aims to do, is getting equal rights to everybody other than tribals. There are a lot of tribal population in Assam, like Karbis, like Boros, who have been excluded from the bill. But UCC aims to give a uniform legislation to all, in a sense, rights of marriage, if you tell about rights of divorce and the rights of a woman in case of a divorce, what she gets and all that. So that UCC has brought in. It's nothing very different because in other laws, Article 44 also mandates that. But UCC, in a way, aims to give a uniform level playing field to everybody other than tribals in Assam, talking about equal rights.
3: All right. What reasons has the Assam government given for introducing the UCC? And why does the Hemant Biswa Sarma government believe that such a law is necessary?
4: After BJP was in power in Assam, this is the third term, but when Hemant Biswa Sarma came into power in 2021, he was selected as a chief minister, replacing former chief minister of Assam, who was also from BJP, Sarbananda Sonowal. So he was very vocal about one thing, that Assam has a demographic change. There is a growth in population and all that. And he was very hell-bent on getting UCC in action, in the sense that if you see some communities, there are no rules for a divorce, then there is a polygamy which existed. That has prompted to take such legislation or bring in some legislation. In fact, BJP, before coming to power this time, they promised in their manifesto that they will get Uniform Civil Code in Assam. And it's the first state in Northeast to enact a UCC and the third state in India after Gujarat and Uttarakhand to enact a UCC. The main aim was that, which I feel, there is no law governing a certain section of society where polygamy is rampant, child marriage is rampant. that is where I think Mr. Himanta Biswa Sarma was telling from before that if he is voted back to power, he will get UCC in Assam, and which he has done it.
3: All right. Before we proceed, let's listen to what the Prime Minister had to say about the UCC.
6: Dharmik aadhar par bane personal law ko khatm karne ki Baba Sahab ne zordar wakalat ki thi. Us samay ke sadasya K.M. Munshi ji ne

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मनचाहे गीत कार्यक्रम।

आप सुन रही हैं आकाशवाणी रोहतक, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर, न्यूज़ ज़ोन AIR और DTH पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं, आप लीजिए सुनिए मनचाही गीत कार्यक्रम।

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। संतोष शेखावत की ओर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी की चिट्ठियों का भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आप सभी की फरमाइश के साथ। आप हैं सबलपुर कांकेर से हागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी इशिका यादव और तेजल यादव। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। ये श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। राजेश सावले पाटिल, राजदीप, राशि शीतल राजेश, आप श्रोता खत लिख भेजते हैं छत्रपति संभाजी नगर से। और ये चिट्ठी मिली है सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से। लिखने वाले हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर। और ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से। लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छवेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश है मर्यादा फिल्म के गीत के लिए, जिसमें आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।
1: अरे
2: चुपके से दिल दे दे,
1: नहीं ते
2: नहीं ते

आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना आइए सुनते हैं, जिसके लिए तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की गोरा और काला फिल्म से। सुनवा रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर बठिंडा रोड डब्वाली सी राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग हैं इनके साथ। आप हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। ये श्रोता हैं वैष्णव कॉलोनी सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप हैं डोंगरगांव ज़िला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। और ये चिट्ठी हमें मिली है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपति साहू, अनक्ष और आरू साहू।

0: धरती फिल्म से ये गीत हमने सुना, जिसमें युगल स्वर थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। हसरत जयपुरी ने इस गीत को रचा और इसके लिए धुन बनाई शंकर जयकिशन ने। पसंद आप सभी की थी। आप हैं कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम, संगीता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता। आपने खत लिख भेजा राजनगर मधुबनी से, ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से हमारे श्रोता हैं मुकेश गुप्ता, रानी, कुसुम, पलक, पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से चिट्ठी लिख भेजी है मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सुनयांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन ने। ये ख़त हमें मिला है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। लिखने वाले श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मिहराज शाह। अगली चिट्ठी मिली है जाभरून तारधापू से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, कुमारी साध्वी जोशी और गणेश सारगावकर हैं इनके साथ। महाराष्ट्र हिंगोली से इसी गीत को सुनना चाहते थे शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आइए अब सुनते हैं सच्चा झूठा फिल्म से गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की और फरमाइश इस गीत को सुनवाने के लिए आप सभी की है। आप हैं मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान और रवनीत, साथ में इनके निशु। ये श्रोता हैं मुकाम हिप्पर सोगा तालुका ओहा जिला लातूर हुन से उस्मान शेख फौजी, शाहिरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैज़ नबी शेख, शाकिर इस्लाम नबी, बाबा शेख, करिश्मा सानिया, साकिल पठान, बिस्मिलाबी शेख, गदर शेख, आणी नीलोफर शेख हिप्पर सोगा से तालुका जिल्हा नादेड़ हुन, चांदनी आयूब सैयद आणी, राजे अमन सैयद। और आप हैं सूडेवारी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

जानी दुश्मन फिल्म से गीत हमने सुना, जिसमें आवाज़ लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपको सुनवाते हैं जीत फिल्म से गीत। युगल स्वर लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के हैं। इन दोनों गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइश इस प्रकार से है। आप हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार और डैनी पवार। दतरंगी से खत लिख भेजते हैं भागवत वर्मा। और आप हैं गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदली और आरती जोंदली। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा की चिट्ठी हमें मिली है। इसके अलावा ये ख़त हमें मिला है जटगांव सोमनाथ ज़िला जालना से नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, गणेश कार्तिक अश्वनी, जटगांव वैष्णवी जगदाले, हरसुल सावंगी, औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, भावीसपुरा औरंगाबाद से मेघराज शिवराज कोलते, रिधुरा देवी रुद्र कोलकर वाकुलनवी और बदनापुर इन्होंने लिखा है। शायद ये ख़त

जो है अधूरा है, नाम पूरे इसमें नहीं लिखे गए। चलिए कोई बात नहीं, जितना हमें समझ आया हमने इसको पढ़ दिया है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत।

शर्मिली फिल्म से, शर्मिली फिल्म से गीत हमने सुना, आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। नीरज ने इस गीत को रचा और इसके लिए तर्ज बनाई थी आर डी बर्मन ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवा रहे हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से गाना किशोरदा की आवाज़ है। इन दोनों गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइश बताई देते हैं। मॉडल टाउन करनाल से आप हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, नरपिंदर तनेजा, किरण ठाकुर, सुनीता जैन और सुनीता शर्मा। ये श्रोता हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत घवाणकर, सरिता घवाणकर, प्रिंस एकांश घवाणकर। बहादुरा नागपुर से चिट्ठी लिख भेजती हैं वैशाली, शैलेश घवाणकर, श्वेता सुमित घवाणकर और कुमारी ध्वनि घवाणकर। और आप हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। पटेल नगर मल्लोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, बीबी आरजू जाजोरिया। ये चिट्ठी मिली है महाराष्ट्र हिंगोली से, लिखने वाले हैं शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, उत्तम जमदाडे और स्वराज जमदाडे। चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। आप हैं धामणी मनोरा जिला वासीम से तुलसीराम पेंटर डेरे, माया डेरे, संदेश डेरे, किरण प्रज्वला डेरे और ददुल्ला डेरे। सोमढाणा जिला वाजिम से विशाल तुफैसम कुवाणी, चंद्रकांत पाटिल, नीलू पाटिल, शेखर सोनानी, नितिन घाड़े और किशन वायली, साथ में इनके अवकाश ढोले, आकाश ढोले।

सूरज और चांद फिल्म से गीत हमने सुना, जिसमें स्वर था रफ़ी साहब का। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, आपको सुनवाएंगे जंगली फिल्म से गाना। रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। फरमाइश दोनों गीतों के लिए मिली जुली इस प्रकार से है। चकला बाजार सामाना से पप्पू राज खुशदिल, संगीता जिंदल हंसमुख खुशदिल और खुशदिल परिवार। आप हैं गांव बलियाली जिला भिवानी हरियाणा से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी, कमल कुमार गर्वीश और तमन्ना बंसल हैं इनके साथ। ये श्रोता हैं फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा। मलूट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास, प्रियंका, रमन, ऋतु इंदौरा, भविंस खन्ना, मिशेल खन्ना, किंशु खन्ना। और ये खत हमें मिला है गोला बाजार बक्सर से, लिखने वाले हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित।

जय गीत कार्यक्रम का अंतिम गाना आप सभी की फरमाइश पर। आप हैं ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकर लाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराडे, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक वागे, वंदना वागे, भूपेंद्र वागे, झवर वागे, तनुश्री आरोही और काना वागे। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर राजा और रंक फिल्म से गाना आवाज़ रफ़ी साहब की है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम मन चाहे गीत आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर पर रात्रि के 11 बजते हैं। आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बारी बारी से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की

0: चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।